क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: आपके दिल की धड़कन रेडियो फजा 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: Listening to 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: This is a public service announcement.
6: The station.
7: That plays
8: foot tapping music.
9: Hazar 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

कोई से तुम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सा

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station.
10: That plays.
11: Foot tapping music.
12: You are listening 97.1 FM.

radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

नजम से गजल बन गई, तू रोजी बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music.
3: Back to back.
4: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा
5: जो मंगना सी वो तो मिल गया

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136 138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07

0: 1-800-875-93-150-669. Mariah Restaurant, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

मौला जाने, मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and

0: 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, and the 76LW.
1: Park Foods, jo naam hai Mayar ka.
2: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुराकर

डरता है तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसे चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

मलकुना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

ना मैं लिखूं ना तू लिखे ना कोई और लिखार, ये कागज कच्चे चमड़े का वो पाक परवरदिगार। तू गुमान करता है अपनी तदबीर पर बंदे, मगर आ मगर चलती वही है जो चाहता है किरदार।

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: सेंटर?
1: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
1: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
3: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 011591168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
5: जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुरा

अलावा जी सामीन आपको बताते चलें कि अगर आप डेफिनेटली आप हमसे रब्ता करना चाहेंगे तो जनाब लाइव प्रोग्राम में शामिल होने का क्या तरीकाकार है जनाब 01157100971 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे और आप शामिल हो जाएंगे हमारे साथ गुड मॉर्निंग नॉटिंगम की लाइव ट्रांसमिशन में, और ट्रांसमिशन में शामिल होने के बाद आप हमारे साथ रहेंगे, आप अपनी राय का इजहार करेंगे। आज के टॉपिक के हवाले से आप मुझे अपनी कोई विशेष टिप्पणी, अपने कोई विचार, अपनी कोई राय मुझे लाजमी दीजिएगा। जमातुल मुबारक के बाबरकत दिन पे रूटीन क्या होनी चाहिए आप भी शेयर कीजिएगा। फजर की नमाज़ अदा करें, उसके बाद अपने काम काज के लिए निकलें तो खुशबू खुशू के साथ अच्छी खुशबू लगा के अच्छे कपड़े पहन के जुमा की नमाज तक अपने आप को तरोताज़ा कीजिए, और उसके बाद कोशिश कीजिए कि जितने भी लोग आपसे मिलें तो एक हल्की सी स्माइल उनको लाजमी पास कर दें। जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन खुश अखलाकी के साथ अगर शुरू करें तो वीक एंड भी आपका बहुत अच्छा होगा, फिर वीक स्टार्ट भी इसकी बरकत से बहुत अच्छा होगा। सामीन गपशप हमारी साथ साथ चलती रहेगी, टॉपिक मैंने आपको बता दिया, इस टॉपिक पे ही हम डिस्कस करेंगे काफ़ी समय तक, काफ़ी टाइम तक, और 01157100971 ये नंबर है जिस नंबर पे आप मुझसे रब्ता करते हैं। अलावा ये आपको बताते चलें कि अगर आप FM पे हमें 97.1 FM के नाम से सुन रहे हैं तो फिर डैब पे हम फजा के नाम से अवेलेबल है। ऐप के ऊपर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो फजा 97.1 FM ऑफिशियल सर्च बार में, और फिर एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ फजा लिखा आपके सामने आएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए, जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्मार्ट हुई नजर। गुड मॉर्निंग नॉटिंगम, आपका मेजबान नासिर खान। इबादत है आज का टॉपिक।

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात वापिस नहीं आती।

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबान आसिर खान आपके साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए

खूबसूरत सा कलाम था इनाब तू कुजा मन कुजा, बहुत ही रूपरवर कलाम, आपने भी इस कलाम को एंजॉय किया, मैं भी आपके साथ हूँ। सामीन हमें दरमियान हायल होने जा रही कमर्शियल ब्रेक, बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन हमारे साथ चल रही है, इबादत हमारा टॉपिक है आज का जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत दिन के हवाले से। और एक ज़बरदस्ती चीज़

0: Yum.
1: Or place your order today on 0759315069. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
2: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
3: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
2: पॉप फिल्मी गाने।

ताकि हम अपना जो आज का दिन है उसको एक ऐसे तरीके से गुजारें, एक ऐसे खुशनूदी से गुजारें, अल्लाह ताला की रज़ा से गुजारें कि उसमें हमें किसी किस्म की कभी कोई दिक्कत ना हो। अगर इबादत के दौरान अगर हम थोड़ा सा भी ये सोचते हैं या हम ये समझते हैं कि हमें अब असल इबादत की तरफ मुड़ना है या हमने नमाज पढ़नी है, ये तो वो हैं सामीन जो फ़राइज़ हैं, जो अपने फ़र्ज़ अदा करने हैं। अब जो अगला हमारा एक सेगमेंट है वो ये सेगमेंट है कि हम इबादत में अपनायत कैसे लेके आएंगे। यानी इबादत तो आपने कर ली, अल्लाह के हुजूर आप हाज़िर हो गए। अक्सर आपने सुना होगा ना खुशू खुजू के साथ अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना। आप अल्लाह के हुजूर खुशू खुजू के साथ पेश तो हो गए, अब डिस्कस ये करते हैं कि इसमें अपनायत कैसे लाई जाए। तो कुर्बान जाए, बड़ी ज़बरदस्त सी कुछ बातें हैं, ये वो बातें हैं जो रम्ज़ वाले समझते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाई देता हूँ कि इबादत में अपनायत से मुराद अल्लाह ताला से ऐसा ताल्लुक़ है जहाँ डर या दिखावे के बजाय मोहब्बत, सुकून और दिली लगाव पाया जाए। यानी अक्सर होता है ना कि लास्ट मैंने जैसे पिछले चंक में मैंने हज़रत अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा कि मैं बंदा हूँ तेरा, मजदूर नहीं हूँ, ठीक, कि इबादत के बदले फिर दोस्त मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं। लालच के लिए मैं करूंगा इबादत, बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। बिल्कुल जनाब, वो अपनायत अल्लाह ताला के हुजूर जब आप खड़े हो जाएं, अल्लाह के हुजूर जब आप क़याम पज़ीर हो जाएं और अल्लाह के हुजूर आप अपने आप को पेश कर दें, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात बड़े गौर से, बड़े प्यार से जब आपको देखे कि इबादत करते हुए, तो फिर एक दिली सुकून आपको मिले। आपको जहनवाज के ऊपर खड़े होकर एक ऐसा सुकून मिले, एक ऐसा ज़बरदस्त सा खिंचाव मिले आपको। अक्सर होता है ना कि जब आप किसी अपने चाहने वाले बंदे के पास जाना होता है तो आपका ना दिल थोड़ा ना हल्का हल्का धड़क रहा होता है, सांसें थोड़ी सी तेज़ होती हैं, रूह में हल्की सी बेचैनी होती है, दिमाग मुस्तरिब होता है, जो दिल है वो अपने हवास में होता है लेकिन हवास खमसा के अंदर उसका कोई मुकाम नहीं होता। उस वक्त हम फील कर पाते हैं, हम ये सोचते हैं, हम ये समझते हैं कि अब हमें जो कुछ मिल रहा है या जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ख़ास आदमी है। किस तरीके से जनाब हम तैयार होते हैं, नया सूट निकालेंगे, कफलिंग्स लगाएंगे, उसके बाद कमाल कर देंगे। अगर किसी सकाफ़ती, रियासती या कौमी या मजहबी किसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं तो उस तरह का लिबास हम ज़ेब तन करेंगे, और अगर किसी मॉडरेट पर्सनैलिटी को मिलने जा रहे हैं तो फिर हम डेफिनेटली इंग्लिश तर्ज के सूट्स में आएंगे। अब ये सारी चीज़ जब हम खुशू खुजू के साथ तैयार होते हैं किसी को मिलने जाने के लिए, तो फिर जब हम उस खानदान, उस जहानों का जो, दो जहानों का जो मालिक है, जब हम उसकी इबादत में जाएं, जब उसके सामने हम हाजिर हों, तो फिर सामीन खुद सोचिए कि हम खुशू खुजू के साथ हाजिर तो हो जाएंगे, क्या हमारा लिबास फटा हुआ होगा, क्या हमारे जिस्म से बदबू आ रही होगी, हमारे जिस्म से खुशबू आएगी, हम अच्छी परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे, इतर वाह वाह क्या क्या लेके जाते हैं जनाब जब किसी दुनियावी बंदे से मिलना हो। और फिर जिसने ये कुल कायनात बनाई है उसको जब हम मिलेंगे तो फिर उसी खुशो खुजू के साथ, जितनी आपकी ज़बरदस्त तैयारी होगी ना सामीन इबादत के लिए, जितनी आपकी ज़बरदस्त तैयारी होगी अपने अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए, महबूद के सामने झुकने के लिए, जितनी खूबसूरत तैयारी आप करेंगे उतना ही खूबसूरती की अपनायत आपके दिल में बसती जाएगी। वो खूबसूरती बेसिकली अपनायत की जगह ले लेगी और उसके बाद आपके दिल के एक तो मेडिकली होते हैं ना, सारे वॉल्व ओपन हो जाएंगे, आपकी आर्टरीज, उसके बाद आपकी कैपिलरीज सारी वर्क करना, जिनको आप वरीदें या शरियाने कहते हैं, सारी वर्क करना शुरू हो जाएंगे, आपके एओटा तक हर चीज़ ओपन होके खुल जाएगी। ये मेडिकली है क्योंकि आपके दिमाग को सुकून मिला है, आपका जो डोपामिन है, जो खुशी का डोपामिन है वो हाई लेवल पे गया और उसमें एक अपनायत आई, उसने बेसिकली ये तसलसल दिया और न्यूरोलॉजी में न्यूरॉन को ये ऑर्डर दिया कि जाओ अब दिल का जो ऑर्गन है, ये जो एक खूबसूरत सा ऑर्गन है, इसमें अल्लाह की ज़ात बस रही है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह 72 मरतबा एक मिनट में ये अल्लाह की ज़ात को पुकार रहा है, इसका दिल मुनव्वर हो चुका है, इसका दिल सफ़ेद है, इसका दिल नूरुल अनन नूर है, रोशनी इसके दिल से निकल रही है, किरणें फूट रही हैं रोशनी की, तो फिर अब जाओ और इसको ये पैगाम दे दो कि तुम्हें खुशी, तुम्हें अपनायत मिल चुकी है, अब
जब इंसान अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा तो एक तो मेडिकली भी इंसान फिट रहेगा, और क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के सामने जब पेश होगा तो फिर अल्लाह की ज़ात उसकी जितने भी अजायबात हैं उनसे पर्दा हटाते हटाते हटाते उसको अपने कुर्ब में ले आएगी, अपने करीब कर लेगी। और जब अल्लाह की ज़ात उसे अपने कुर्ब में ले आएगी, अल्लाह की ज़ात उसे अपने करीब कर लेगी, तो फिर एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब अल्लाह की ज़ात खुद उसको कहेगी कि अरे तू मेरे पास आया है, अब देख मेरा वेलकम करना, मेरा खुश आमदेद करना, तू जिस तैयारी से मेरे पास आया मैं उसी तैयारी से तुझे अपने गले के साथ लगाऊंगा। 72 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती सामीन, अब इबादत में अपनाइयत लाने के लिए अमल कौन कौन से करने चाहिए? सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि खुशोखुशू के साथ खूबसूरती के साथ तैयारी करके, होता है ना कि जब आप नमाज के लिए तैयार होते हैं तो वैसे यूजली हम फेस वॉश लगाएंगे, अपने चेहरे पे काफ़ी सारे उपटन हम इस्तेमाल करेंगे या हम कुछ फेयरनेस क्रीम वगैरह या ये चीज़ें करेंगे तो नॉर्मली तैयार होने के लिए। लेकिन जब हम नमाज के लिए आते हैं, हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी को देख लें या वर्ल्ड वाइड किसी जगह पे भी, तो ये छोटी सी चीज़ नज़र आती है कि मस्जिद में जाना, उधर ही वुज़ू करना, आस्तीने जनाब उधर से सीधी नीचे करना, बटन अगर खुले हुए हैं गरेबान के वो खुले हुए हैं, कुछ भी है जैसे भी है, कैप अगर ऐसे पहनी हुई है, हेड पहना है तो उसको घुमा के पीछे कर लेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं ठीक है, इससे आपकी फ़र्ज अदा होगी, इबादत इसकी डेफिनेटली होगी, अल्लाह की ज़ात कबूल करने वाली, अल्लाह की ज़ात कमी बेशी माफ़ फरमाए। साहिब इल्म लोग मुझे सुन रहे हैं, उलमा भी डेफिनेटली सुन रहे होंगे, तो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि इबादत इस जगह पे हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू होगा उस इबादत में वो खसलत, वो अपनाइत नहीं आएगी। उस अपनाइत को अपनाने के लिए एक स्पेशल एहतमाम, एक स्पेशल अरेंजमेंट कि जिससे आपको ये पता चले कि नाउ यू आर गोइंग टू मीट विद समवन हु इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड एज वेल एज आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम एज वेल, कि हम उसके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना हम वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं अपने चाहने वाले को, मैं अपने प्यार करने वाले को अपने दिल के करीब रखता हूँ। अक्सर हम भी जवानी में ये बातें करते थे, खून से ख़त लिखे जाने, अगर एक दौर था अज़राए मजाक, सिर्फ बात को समझाने के लिए, ताकि आपका जो दिमाग है, आपका जो जहन है, वो मेरे अल्फाज के साथ चल सके, मेरे अल्फाज के शाना बशाना चल सके, ताकि मैं ये आसानी से बता सकूं, अपने आप को समझा सकूं कि जिनको मैं बात समझाना चाह रहा हूं या जिनसे मैं बात कर रहा हूं या जो मुझे गाइड कर रहे हैं वो भी मुझे सुन रहे हैं। और जितनी खूबसूरती के साथ मैं इस चीज़ को बयान करना चाहता हूं, मेरा लहजा, मेरे अल्फाज, मेरे जज्बात और मेरे एहसासात सब के सब मेरे लहजे में, मेरे अल्फाज के साथ मौजूद हैं, और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा होगा। तो जब ये चीज़ें डायरेक्ट आपके दिल पे असर करती हैं ना, हल्की सी चोट देती हैं, तो सामीन फिर इबादत में अपनाइयत आती है। तो अपनाइयत के लिए किस चीज़ पे हमने सबसे ज़्यादा मुख्तस करना है? हमने सबसे ज़्यादा मुख्तस करना है एक नुक्ते पे। शेर कहते हैं ना, फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबा नू, कर बंद इल्म दें बाबा नू, एक नुक्ते पे गल मुकरी है। सामीन जब आप कुर्बे इलाही में आ जाते हैं अपनी इबादत में अपनायत लेके, तो उस वक्त सबसे मुश्किल चीज़, सबसे जो टफ चीज़ होती है उस नुक्ते पे खड़े रहना, उसको कंटिन्यू करना,

वो तार ना टूटने पाए, और अगर वो तार टूट भी जाए तो फिर आप एक बार फिर से उस तार को जोड़ लें। किस तरह? फिर खुशू के साथ तस्बीह तहलील करें, अगर फ्री बैठे हुए हैं तो अल्लाह का विर्द करें, अल्लाह का जिक्र करें। मुंह से नहीं कर सकते तो अपने मोबाइल पे कोई ऐसा कलाम लगा लें, अपने मोबाइल पे तलावत कलाम पाक लगा लें, जो हल्की हल्की आपके दिमाग में चलती रहे, जो हल्की हल्की आपके दिमाग में बसती रहे, जो हल्की हल्की आपको ये बताती रहे कि मैंने जो नमाज़ पढ़नी है या हमने जो नमाज़ पढ़नी है, हमने जो इबादत करनी है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक नुक्ता है। वो नुक्ता को क्या है? वो खशियत इलाही का नुक्ता है, वो रज़ियत इलाही का नुक्ता है, वो खुशनूदी इलाही का नुक्ता है। उस नुक्ते पे खड़े होके अगर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, वाओ दैट्स अमेजिंग, तो फिर आप इबादत की अपनायत के उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। अरे बड़े ज़बरदस्त एक कलाम मेरे पास मौजूद है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं उस नुक्ते की, उस पॉइंट की, जिस पॉइंट पे खड़े होके हमने अपने आप को मैनेज करना है, हमने अपने आप को सर्कुलेट करना है, हमारी रूह ने ताज़ा होना है, हमारी रूह ने समझना है हमको, तो उस नुक्ते के हवाले से बड़ा खूबसूरत सा कलाम है, एक नुक्ते ते गल मुक्ति है। सुनिए ना ये खूबसूरत सा कलाम, इस कलाम के उस पार रहती है मेरी आपसे फिर से मुलाकात। इबादत को हम डिस्कशन में ले आए चुके हैं पहले, और अब इबादत में अपनायत और उसमें खसरत लाना इस कलाम के बाद फिर डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड योर होस्ट इज़ राइट हियर।

0: जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आपका मेजबान नासिर खान आपका साथ हूँ आपके साथ ऑल द वे फ्रॉम नॉटिंघम। बड़ी खूबसूरत सी डिस्कशन हमारी साथ से चल रही थी, एक नुक्ते थे गल मुक्ती है और नुक्ता इना कौन सा है उस नुक्ते पे भी हम आएंगे। बेसिकली अगर देखा जाए सामीन, जो हम इस खूबसूरत से कलाम से पहले बात कर रहे थे कि वो जो नुक्ता है उस नुक्ते में किसी जगह पे भी किसी मुकाम पे भी किसी मुकाम के अलावा आप ये कह लें कि किसी ऐसे मंजिल में या ऐसे मंजर में आप कह लें ज़बरदस्त सी। अब मुझे वो लफ्ज़ मिल गया जिस लफ्ज़ की मैं तलाश कर रहा था। वो मंजर कैसा मंजर है कि जब आप अल्लाह के हुजूर हाजिर हों। अभी जो बात करने वाला हूँ ये बड़ी गहरी बात है सामीन, और अगर ये बात हमारे दिल में उतर जाए, कहते हैं ना कि काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, बात को दिल में उतारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बात में जान होनी चाहिए। और जब हम उस जान की बात कर रहे हैं जो जहान की जान है, जिसने ये जहान बनाया और अपनी जान की वजह से बनाया, तो फिर खुद सोचिए खुद समझिए कि बात कितनी खूबसूरत होगी, बात कितनी प्यारी होगी। और फिर उसके बाद जब हमें उस नुक्ते का पता चलेगा सामी, जो मैं बात करूँ कि इबादत में अपनाइत, बेसिकली ये वो नुक्ता है, ये वो पॉइंट है जो सूफीज़म में भी बयान किया गया, शरीयत में भी बयान किया गया। और आप सलातुल्लाह की ज़ात ने जो कहा ना कि अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाती है, वातासिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अब अल्लाह की रस्सी उलमाए किराम के नज़दीक डेफिनेटली बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो नमाज पढ़ना, वो पाँच अरकान दीन जो हमने पूरे करने हैं, वो पांच अरकान को तसलसल के साथ पूरा करना, उसमें कोई कमी बेशी ना छोड़ना, खुशु खुजू के साथ बड़े दिल के साथ उनको अदा करना, अपने फ़राइज को सर अंजाम देना, ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो अल्लाह की रस्सी है। हम तफरके में हम एक दूसरे से अलहदा कभी भी नहीं होंगे, जैसे कि हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी, हमारे नॉटिंघम में स्पेशली, या कहीं भी आप देख लें जहाँ पे हम अपने अपने मतलब अगर आप अपने होमलैंड में हम देखें, अपनी कंट्रीज में देखें, तो सरहदों के फासले हैं, दूर हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इस देश के प्रदेश में, इस प्रदेश के दिल में हम एक दूसरे के करीब होते हैं और बहन भाइयों की तरह, यानी बहुत करीबी रिश्तेदारों की तरह रहते हैं, यानी अपने रिलेटिव्स की तरह रहते हैं। तो समीन बिल्कुल वो दिल जो पाक होते हैं ना किसी भी मज़हब किसी भी मसलक के लिए, जो खुशी के साथ सबको गले लगाते हैं, उनके दिल के अंदर जो बेसिकली इबादत होती है, वो इबादत का वो नुक्ता है, वो पॉइंट है जिस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। बेहद शुक्रिया जो लिसनर्स हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फाखरा जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और बड़ा प्यारा सा एक उन्होंने कलाम, एक छोटा सा शेर उन्होंने मैसेज किया, मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। कहती हैं कि नासिर ने इस ख्याल से तस्बीह तोड़ दी, क्या उसका नाम लूँ जो खुद बेहिसाब है। बेहद शुक्रिया जनाब। और इसी तरह दूसरे जो हमारे
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
0: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
0: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
0: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
0: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिर खान एक बार फिर आपके साथ जी। गुड वाली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए। जी बिल्कुल, मुझे असल में बातें ऐसी हमारी चल रही हैं और इतना खूबसूरत रिस्पांस आप लोगों का आ रहा है और इतने ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर, जैसा कि पहले बताया कि वो नुक्ता है ना, वो नुक्ता हम भी पकड़ चुके हैं बेसिकली, लेकिन हमें छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद क्योंकि मेरा और आपका टाइम रहता है ठीक 10 बजे तक। तो बेसिकली अब जो हम इबादत की अपनाइत पर बात करें, कमर्शियल ब्रेक मेरे दरमियान आ गई थी और बात करते करते पता ही नहीं चला, मैं अनाउंस नहीं कर पाया, इसलिए बड़ी तेज़ी में मैंने आपको कहा जी कमर्शियल ब्रेक है। बहुत शुक्रिया जनाब, इतने खूबसूरत से शेर आपने मेरे लिए पढ़े और आपने जो मौजू है, जो मौजू सुखन है बल्कि उसके साथ मैच किया, और क्या बात है ना, यही होते हैं खूबसूरत और बाकमाल हैसियत लोग। और जितने भी हमारे लिसनर्स इस वक्त मौजूद हैं नॉटिंघमशायर से या फिर नॉटिंघम से बाहर हैं या फिर यूके से बाहर हैं, स्पेशली मोहसिन जिन्होंने मुझे मैसेज किया दुबई से हमें लाइव ट्यूनिंग में सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका अफसल आप हमारे साथ हैं, थैंक्स अलॉट। मालिनी जी आज सुन रही हैं जनाब ये बोल्टन से, बहुत बहुत शुक्रिया। ये नाम कुछ ऐसे लिसनर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं तो इनका नाम लेना पड़ता है क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं जनाब, ये हमारे मेहमान भी हैं और ये जनाब स्पेशली खासियत ये है कि हम नॉटिंघमशायर वाले तो हर वक्त 97.1 एफएम को ट्यून करके रखते हैं और जो बाहर वाले स्पेशल ट्यून करते हैं किसी ख़ास प्रोग्राम के टाइम तो फिर एक बड़ी अपनाइत होती है। जो जनाब अब बात हम कर रहे हैं आगे कि इबादत की अपनाइत, जो जैसा कि मैंने पहले बात की कि इबादत में जो अपनाइत है सामीन वो ऐसी है कि इंसान जब अल्लाह के हुजूर खड़ा हो, और सबसे बड़ी चीज़ जैसे पहले था कि अपनाइत लाने का जो पहला तरीका वो ये है कि आप खुशू के साथ प्रॉपर तैयारी के साथ अल्लाह के हजूर हाजिर हों हर नमाज में, और उसके बाद जब आपको जाय नमाज के ऊपर खड़े हो के ये एहसास हो जाए कि आप फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे, फ़र्ज़ तो अदा कर रहे हैं आप, कि आप फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे, आपके दिल को एक सुकून मिले जाय नमाज पर खड़े हो के। ज़िंदगी की जितनी परेशानी है, जितनी थकन है, जितनी काम की टेंशन है, जितनी हमारे इस प्रदेश में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या परेशानियां हैं, वो सारी एक साइड पर रख के ये देखें कि जब लज्जत मिले आपको इबादत में, तो वो इस यकीन के साथ मिले आपको कि जिसके सामने आप खड़े हैं वो हमें 72 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। यानी माँ एक है ना, बाहें खोल के गले लगा ले, 72 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला जब हम उसके हुजूर हाजिर हुए, हमने क्याम किया और ये मुनादी की अल्लाह अकबर के अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर अल्लाह ताला की ज़ात पे जब आपने पढ़ा ना कि सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, तेरी बहुत बड़ी अज़मत है, तेरी अज़मत की कोई मिसाल नहीं, किसी जगह पर हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। मौला अली से किसी ने पूछा एक बेसिकली आउट ऑफ द सब्जेक्ट ये बात है लेकिन दिल में आया कि आपके साथ शेयर करूं, कहते हैं ना वो नुक्ता कभी कभी आपको ना किसी और तरफ लेके जाता है लेकिन हम घुमा के वापस ले आएंगे। वो एक नासपी आप ये कह लें कि जो उस वक्त के हिसाब से बड़े अहले इल्म लोग थे लेकिन मोस्टली क्रिश्चियन कैथलिक या बहुत बड़े बड़े ऐसे जो उनके रहनुमा या रहबर थे जो बड़ा दूर से एक सफ़र करके मदीना की सरजमीन पे आते थे और हज़रत अली के साथ वो मुनाजरा करना चाहते थे, मुकालमा यानी डायलॉग करना चाहते थे किसी भी टॉपिक पे, और यहाँ से फिर मौला अली की जो वो है ना कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, वो जो बाबे अली है, जो बाबे इल्म है, वो जब खुलता था तो फिर कमाल करता था। अब उस जो रहबर था, रहनुमा था एक दूसरे मसलक का या दूसरे मजहब का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मौला अली से आगे पूछा क्या अल्लाह ताला की जात, क्या खुदा तुम्हारा और खुदा बना सकता है? बहुत ही एक अजीब सा सवाल था और पूरी महफिल में ना एक सकता तारी हो गया। हजरत अली मुस्कुरा पड़े तो उन्होंने कहा कि वो चाहता है, वो कहता है कुन तो हो जाता है, अगर वो चाहेगा तो बहुत खुदा हो जाएंगे, हर खुदा के आगे खुदा होगा इसका किसी को नहीं पता, अगर वो चाहे तो सामीन यही वो चीज़ है। अब जब हम इबादत की बात करते हैं ना और इबादत में अपनाइत की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है कि अपनाइत में अल्लाह ताला की ज़ात हमें चाह ले
और कमाल हो जाए कि अगर ऊपर वाले की ज़ात हमें चाह ले और हमें अपने पास बुलाने की तौफीक दे दे। अक्सर हम कहते हैं ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो चुकी है, हमारी नमाज कबूल हो चुकी है। समीन, जब हमें अगली नमाज के लिए अल्लाह के हजूर खड़े होने का मौका मिल जाए तो समझे कि पिछली नमाज हमारी कबूल हुई है, तब अल्लाह की ज़ात ने हमें मौका दिया है दोबारा उसके हुजूर हाजिर होने का। समीन, खूबसूरत सी डिस्कशन है, बहुत ही प्यारी गपशप है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेरा जुमे का प्रोग्राम होता है, मैंने पिछला जो मेरा चंक था उससे पहले भी मैंने अनाउंस किया कि एक खूबसूरत सा कलाम है, तुम एक गोरख डंडा हो, आपकी गोश गुजार करता हूँ। सुनिए इस कलाम को, इस कलाम को इस पार ये कलाम इतना महव करने वाला है और इबादत में अपनाइत का जो टॉपिक है, पहले इबादत था अब इबादत में अपनाइत है, उसके साथ ये इतना फिट बैठता है कलाम कि इंसान मगन हो जाता है। लेकिन अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आपने सीट बेल्ट पहन के रखनी है, फोकस अपना ड्राइविंग पे रखना है और माइंड अपना आपने ऊपर वाले की तरफ यानी आज के दिन की फजीलत और आज के दिन की इबादत में अपनाइत के हवाले से अपने माइंड को अपने फोकस रखना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द 97.1 एफएम एंड डैब ऐप पे आप हमें फजा के नाम से सर्च करेंगे, रेडियो फजा या फजा रेडियो, रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल, ये भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप डाउनलोड करेंगे, प्ले करेंगे, गेट करेंगे, तो उसके बाद यही आवाज़ आपको मिलेगी गुड मॉर्निंग नॉटिंघम कहते हुए जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन के मौका पर। और इसके अलावा जितनी भी महिलाएं हमारी घरों में बैठी हैं, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग पे हमें सुनना चाहती हैं तो एड्रेस बार में सिर्फ आपने ये लिखना है कि live.radiofaza.co.uk के अलावा जी हमारी जितनी भी बाकी ट्रांसमिशन्स हैं, हमारे जितने भी बाकी क्योंकि मीडिया हब है बेसिकली फजा रेडियो, जितने भी बाकी ट्रांसमिशन हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट विच इज़ radiofaza.co.uk। अलावा जी हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, एक्स, टिकटॉक, इन सब पे आप जाएं, रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल सर्च करें और वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और एहसास दिला सकते हैं अपने होने का। लेज लिसन, खूबसूरत सा कलाम, तुम एक गोरख डंडा हो, आपकी खिदमत में पेश। स्टे ट्यून एंड योर होस्ट विल बी आफ्टर द कलाम। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मुलाकात रहेगी, लेकिन इसके बाद होगी हाईली कमर्शियल ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के उस पर नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम होगा जो जुम्मा के टाइम तक जो हमारी जो जुम्मा की स्पेशल ट्रांसमिशन हैं, बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं, आप महजूज होंगे, मुस्तफीद भी होंगे। तो स्टे ट्यून्ड, एंजॉय द ट्रैक तुम एक गोरख डंडा हो बाय उस्ताद नुसरत फतेह अली खान।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

सुबह लिसनर, सबसे पहले आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप हमारे दीवतालों का हिस्सा बन सकते हैं और अपने ख्यालात, एहसास, आज के दिन के हवाले से, दीगर ज़िंदगी के हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, जैसे कि आज का दिन है फ्राइडे, सो इस हवाले से अगर आप कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं या फिर ओवरऑल आप अपनी अमली ज़िंदगी से मुतल्लिक कुछ भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ज़िंदगी के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर हम आपको दें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सो उन तमाम बातों के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू बन सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा। सो आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से शामिल हो सकते हैं डीवा डायलॉग में। सो वेल लिसनर्स, अगर आप भी बनना चाहते हैं डीवा डायलॉग का हिस्सा, सो उसके लिए सिंपली आपको 01157100971 इस छोटे से प्यारे से नंबर को कर लेना है सेव। सेव करने के बाद आप इस नंबर के थ्रू ना सिर्फ हमसे शेयर कर सकते हैं अपने ख्यालात, जज्बात, एहसास, साथ ही साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं या फिर कोई ऐसा स्पेसिफिक मौजू जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें। सो डू लेट मी नो थ्रू दिस नंबर। साथ ही साथ लिसनर्स, आप अपनी तमाम तर फरमाइशें भी हमसे शेयर कर सकते हैं। सो वरना आपको ये होगा कि आपको जाना होगा इस नंबर पे, अपना फ़ोन उठाना है। सबसे पहले फ़ोन उठा के आपने सर्च करना है, सॉरी फ़ोन उठा के आपने सेव करना है 01157100971। सो इस नंबर को सेव करने के बाद जल्दी से आपने अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, आप चाहते हैं बाकी तमाम तर लिसनर्स से शेयर करना, आपने लिखकर भेज देना है। सो वेल पूरी कोशिश की जाएगी कि जो चीज़ें आप हमें सजेस्ट करें, रिकमेंड करें, हम उनको प्रोग्राम में शामिल करें और आपके सजेशंस का भरपूर ख्याल रखें। सो वेल लिसनर्स, ये था वो तरीका जिसके थ्रू आप हम तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं और हमसे अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमारी ये आवाज़ आप तक पहुंच सकती है। सो जी लिसनर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने फेवरेट प्रोग्राम को और रेडियो फजा 97.1 FM को ट्यून कर सकते हैं। सो हमें ट्यून करने के लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे, जो कि है radiofaza.co.uk। सो इस वेबसाइट के थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप हर तरह की मालूमात जो रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड है हासिल कर सकते हैं। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रेडियो फजा 97.1 FM पे अब कौन से नए प्रोग्राम्स हैं आने वाले, या फिर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम का, इस सेटअप का हिस्सा बनना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए जो जो भी तमाम तरह चीज़ें आपको रिक्वायर हैं वो हर तरह की मालूमात आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट पे। सो वेल लिसनर्स, आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो अगर आपको लगता है कि मेरी तरह आपकी आवाज़ भी है दमदार और आप अपनी आवाज़ का जादू जगा सकते हैं, सो उसके लिए आपको हर तरह की मालूमात हासिल करनी होगी हमारी वेबसाइट से। सो वेल लिसनर्स एंड माई लवली डिवाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिले बिना किसी इंटरप्शन के, जहाँ आप रेडियो फजा 97.1 FM के तमाम तर प्रोग्राम्स को बिना किसी डिस्टर्बेंस के ट्यून कर सके, सो उसके लिए सिंपली आपको हमारी एप्लीकेशन को करना होगा इंस्टॉल। सो हमारी एप्लीकेशन के लिए आपको जाना होगा एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर, वहां जाके आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पे हो जाएगा डिस्प्ले। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, ये जो पर्पल कलर का

सो द लिसनर्स, मैं ये बता रही थी कि एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर से आप आसानी हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप आसानी हमें कहीं पर भी ट्यून कर सकते हैं। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो एक एक करके मैंने शेयर कर दिए हैं आपसे। उम्मीद करती हूँ कि आप हमें इन तरीकों के ज़रिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे और भरपूर प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सो वेल लिसनर्स, आज के रीवा डायलॉग का ये सफ़र मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी गपशप करेंगे और मेरे पास आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेशन भी है जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी ठीक 10 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत से कलाम के साथ। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपदा परवीन साहिबा के कलाम मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। सो हमेशा की तरह आज भी मैं शामिल करूँगी आपदा परवीन साहिबा का एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम। सो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर ये गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से कलाम को एंजॉय किया होगा। वेल इसी तरह के आप हमें अपनी फरमाइशें हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है। सो आज हमारे प्रोग्राम का स्लोगन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज हम प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ शामिल करेंगे खूबसूरत सूफी कलाम। सो अगर आपको कोई कलाम बेहद पसंद हो सो आप हमें बता सकते हैं।

लिसनर्स, जैसे कि है बात कर लेते हैं हम उन तमाम थे लिसनर्स की जो कि हमारे ऐसे लिसनर्स इस वक्त घरों से बाहर निकल चुके हैं, अभी रवा दवा हैं अपने ऑफिस, यूनिवर्सिटी, स्कूल या फिर काम काज की तरफ। सो अगर आपका भी शुमार उन्हीं सब लोगों में से है जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या फिर अपनी डेस्टिनेशन के थोड़ा आसपास पहुंच चुके हैं, सो आप सभी को मैं बताते चलती हूँ कि किस तरह से आप इस सफ़र को बना सकते हैं मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद यादगार। सो इस सफ़र को खूबसूरत बनाने के लिए आप हमें ट्यून कर सकते हैं फ़ज़ा टैप के थ्रू। सो वहाँ पर जाकर हमें ट्यून करिए और हमारा साथ दीजिए। सो वेल लिसनर्स, कभी ऐसा हुआ कि जब आप सुबह सुबह उठे और आपको ऑफिस जाना हो काम काज के लिए, बट स्टिल आपका दिल कर रहा हो काश कि आज ऑफिस आ जाया जाए या फिर किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का दिल कर रहा हो। सो समटाइम्स मेरे साथ ऐसा होता है कि जब सुबह मैं कहीं पर भी जा रही होती हूँ तो कभी कभी दिल करता है कि मतलब कि सफ़र थोड़ा लंबा हो जाए और डेस्टिनेशन आए ही ना। सो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है या आप भी मेरी तरह ऐसा कुछ सोचते हैं, सो आप हमसे शेयर कर सकते हैं थ्रू दिस नंबर जो कि है 0115710091। सो जी माई डियर लिसनर्स एंड माई लवली डिवाज, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जब भी कभी आप घर से बाहर निकलें तो कोशिश किया करें, एहतियात करें, क्योंकि आजकल जो करंट सोसाइटी चल रही है देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बस फ्लैक्स के चक्कर में जस्ट रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर उल्टे सीधे गियर लगाते हैं जस्ट लोगों के सामने ओवर होने के लिए। तो आप लोगों ने इस तरह का कोई भी काम नहीं करना जब भी कभी आप ड्राइव कर रहे हों, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि ड्राइविंग इट्सेल्फ इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क। एंड आई प्रेफर कि जब भी आप कभी ड्राइव कर रहे हों तो आपको अपनी तमाम तर कंसंट्रेशन ड्राइविंग पर रखनी है। सो अगर इधर उधर आसपास की कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है तो वक्त ही थोड़ी देर के लिए आप उसे साइड पर कर दीजिए, खूबसूरत से ट्रैक्स को इन्जॉय करिए, रेडियो फजा 97.1 को ट्यून कीजिए और पूरा फोकस ड्राइविंग पर रखिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि आप किसी जगह पर एहतियात से पहुँच जाएँ, ना कि आप कहीं पर पहुँच ही ना सके। क्योंकि आपको इस चीज़ का भी सोचना चाहिए कि डेली बेसिस पर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी ज़िंदगी के साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी मुंसलिक है। सो वो तमाम तर लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप पर डिपेंड करते हैं, आपकी ज़िंदगी उनके साथ बेहद कनेक्टेड है। सो हो सकता है आपका कोई भी एक गलत कदम या कोई भी लापरवाही किसी दूसरे की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़े नुकसान का मूजब बन जाए। सो इसके लिए ख्याल रखा करें, एहतियात किया करें। सो वेल लिसनर्स, जैसे कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के हवाले से आप सभी को मालूम है कि फ्राइडे को लोग हमेशा दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक तो फ्राइडे एक ऐसा दिन समझा जाता है जहां आपको एक रिलीफ मिलता है पूरे हफ्ते के कामकाज से, एक हैक्टिक रूटीन से, जहां आपको थोड़ा सा वक्त मिलता है खुद के साथ स्पेंड करने के लिए, खुद से बातें करने के लिए और अपनी बहुत सारी स्किन केयर करने के लिए। तो वहीं अगर दूसरी जानेब देखा जाए तो फ्राइडे एक ऐसा दिन है जो कि तमाम तर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बेहद खूबसूरत, पाक और मुकद्दस दिन समझा जाता है। सो अक्सर औकात बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो कि पूरा हफ्ता सोमवार से लेकर जुमेरात तक अपने काम काज में इतना मगन होते हैं, दुनिया की ज़िंदगी में खोए हुए हैं, उन्हें कोई भी ध्यान और तवज्जो नहीं है कि उनकी ज़िंदगी किस जानेब रुख कर रही है। लेकिन फ्राइडे के दिन आप सभी को एक रिमाइंडर मिलता है कि आप में हम सब इस दुनिया में किस मकसद के तहत आए हैं, हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है और हमने क्या करके वापस लौट के जाना है। सो फ्राइडे का दिन इस हवाले से भी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक खूबसूरत दिन है, क्योंकि कहा जाता है कि फ्राइडे को जो दुआ की जाए, सच्चे दिल से अगर दुआ की जाए तो वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। क्योंकि बाज़ उलमा ने ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी दुआ जो अधूरी है ज़िंदगी में, आपकी कभी भी वो दुआ कबूल नहीं हुई, और अगर आप उसे फ्राइडे के दिन असर से मगरिब की घड़ी में दुआ करते हैं या फिर सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो आपको वो चीज़ मिल जाती है। सो हमेशा मैं अपने तमाम दर लिसनर्स को यही रिकमेंड करती हूँ कि इट्स अ गोल्डन चांस फॉर ऑल ऑफ यू, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसे लाजमी अवेल करना चाहिए, क्योंकि आप में हम सब की कोई ना कोई ख्वाहिशात तो होती हैं, हम सब ही चाहते हैं कि हम जिस चीज़ को पसंद करें हमारी लाइफ में वो चीज़ आ जाए, हम हर चीज़
चीज़ वो अचीव कर लें जो हमारा गोल है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करें तो उसके लिए बेहद मेहनत भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह की खुशनूदी हासिल करना, दुआ करना, इबादत करना, ये वो तमाम तर पहलू हैं जिन्हें हम मेहनत के पीछे तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दर हकीकत ये बहुत ही खास, बहुत ही अहम पहलू हैं। सो आपने इन तमाम तर पहलू का भी ख्याल रखना है। सो वेल लिसनर्स, जैसे कि आज फ्राइडे है, सो फ्राइडे के आज के हम टॉपिक की जाने भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत ही खूबसूरत से कलाम की फरमाइश मौसूल हुई है, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। कलाम के उस पार हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक।

वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से तमाम तरह सुनती हुई समातों को खुशामदीद। सीधे लिस्टनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम तीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन पे। सो वेल लिसनर्स, हमारे वो तमाम तरह लिसनर्स जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, सो हो सकता है कि पहले किसी मसरूफियत के सबब या फिर आप ने हमें ट्यून ना किया हो। सो अगर आप अभी अभी हमें ट्यून कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें बताइएगा कि आप कहाँ से हमें ट्यून कर रहे हैं और क्या करते करते ट्यून कर रहे हैं। वेल आज के दिन के हमारे से भी आप अपने प्लान्स गोल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी और मेरी कन्वर्सेशन इसी तरह से मज़ीद अच्छी चलती रहेगी। सो मैं आपको बता देती हूँ, 0115710971 ये है ना सिर्फ हमारा व्हाट्सएप नंबर बल्कि है एक रबते का ज़रिया जो आपको मुझसे और मुझे आपसे जोड़ता है। सो इस नंबर के थ्रू आप हर तरह की बातें हमसे शेयर कर सकते हैं।

लवेबल लिसनर, जैसे कि आज फ्राइडे है, सो फ्राइडे के हवाले से फ्राइडे का दिन हमें थोड़ा सा पॉज करने का एक मौका देता है, अपनी लाइफ को देखने का, अपने डिसीजंस को समझने का, और कभी कभी अपने उन फियर्स को भी आइडेंटिफाई करने का जिन्हें हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। सो इस हवाले से हमारा आज का टॉपिक भी कुछ इससे रिलेट कर रहा है।

आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है, फियर ऑफ फेलियर यानी नाकामी का डर। सो फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का डर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कभी कभी इंसान किसी काम में फेल होना नहीं चाहता, वो सिर्फ इस डर की वजह से स्टार्ट ही नहीं करता, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और शायद यही फियर हमें लाइफ में एक्चुअल फेलियर से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज को रोक देता है। सो समटाइम्स जब हम ये सोचते हैं कि अच्छा अगर मैं नाकाम हो गया तो हो सकता है मेरी ज़िंदगी रुक जाए, सो इसी सोच के सबब हम उस काम को, उस टास्क को स्टार्ट करते ही नहीं हैं। सो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपके अपनी ज़िंदगी को लेकर कौन से फियर्स हैं, वो तमाम सारी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं या आपको नामुमकिन सी लगती हैं। सो वेल, डिटेल में डिस्कशन करेंगे और फिर हो सकता है कि जो तमाम सारी चीज़ें जो आपको कठिन मुश्किल लगती हों एक्चुअली हों ही ना। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फियर ऑफ फेलियर एक्चुअली होता क्या है। हम अक्सर फेलियर को सिर्फ रिजल्ट समझते हैं, एग्जाम में मार्क्स का कम आना, बिजनेस ना चलना, इंटरव्यू क्लियर ना होना, कभी किसी कंपटीशन को हार जाना, लेकिन साइकोलॉजी फियर ऑफ फेलियर को सिर्फ रिजल्ट का डर नहीं कहती। इसमें अक्सर कुछ और भी फियर्स इन्वॉल्व होते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं अनसक्सेसफुल हो गया तो दूसरे लोग मुझे किस तरह से देखेंगे, मुझे दोबारा चांस मिलेगा जिंदगी को आगे बढ़ाने का, मेरी फैमिली मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएगी। और कभी कभी सबसे डिफ़िकल्ट थॉट होता है, अगर मैं फेल हुई तो शायद इसका मतलब ये है कि मैं इस चीज़ को लेकर कैपेबल नहीं हूँ। सो वेल लिसनर्स, देखा आप सभी ने, यहाँ प्रॉब्लम फेलियर से ज़्यादा फेलियर को आइडेंटिफाई करना होती है। एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप अनसक्सेसफुल पर्सन हैं। सो एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता जो कि मैंने, आपने, हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में एक मिथ बना के रखा है कि अच्छा अगर मैं हार गई या मैं नाकामयाब हुई तो फिर ज़िंदगी आगे किस मोड़ पर जाएगी। सो वेल लिसनर्स, आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक्चुअली फियर ऑफ फेलियर होता क्या है। सो बाज़ोकार ज़िंदगी में जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि अच्छा हम काम सही कर पाएंगे या नहीं। हमारे पीछे बहुत सारे डर होते हैं, फैमिली को लेकर, सोसाइटी को लेकर, और बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होता है। सो वो तमाम तरह डर प्रेशर हमें रियलाइज़ करवाते रहते हैं कि अच्छा अगर मैं कामयाब ना हो सका तो मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, लोग मुझे किस नज़रिए से देखेंगे, और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। सो इन तमाम तरह चीज़ों को मिलाकर एक्चुअली बनता है फियर ऑफ फेलियर। सो अब ज़रा बात कर लेते हैं हम एक्चुअली फेलियर से इतना क्यों डरते हैं। ह्यूमन बींग्स नेचुरली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को सीरियसली लेते हैं। अगर हम किसी सिचुएशन में एम्बैरेस, रिजेक्ट या फिर डिसअपॉइंट एक्सपीरियंस करते हैं तो नेचुरली हम फ्यूचर में उस एक्सपीरियंस से बचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कभी कभी हम डिफ़िकल्ट काम को भी पोस्टपोन कर देते हैं, हम कहते हैं कल स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा और प्रिपेयर होने देते हैं, अभी इस चीज़ को लेकर हमारे पास परफेक्ट टाइम नहीं है, पहले मुझे सब कुछ सीखना है, प्रिपरेशन अच्छी चीज़ नहीं, या फिर मुझे मज़ीद एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी प्रिपरेशन का नाम पर हम सिर्फ और सिर्फ एक्शंस को इंडेंटिफाई, पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ये डिफरेंस समझना बेहद इम्पोर्टेंट है। सो प्रिपरेशन आपको रेडी करती है, फियर आपको रोकता है। सो ये वो तमाम तरह चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम फेलियर से इस कदर इतना ज़्यादा डरते हैं। सो वेल लिसनर्स, इसी मौके पर मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है, तो चूँकि अभी मौका भी है तो आप सभी से पूछ लेती हूँ। सो माय लवली डिवर्स, बताइएगा कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप कोई भी नया काम, कोई टास्क स्टार्ट करने से पहले बेहद डरते हैं या फिर एंजाइटी फील करते हैं। सो डू लेट मी नो, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 0115710971। सो वेल लिसनर्स, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन तो हमारी चलती ही रहेगी क्योंकि अभी आपको मुझे साथ में है बेहद टाइम, लेकिन अभी वक्त हो चुका है प्रोग्राम में एक खूबसूरत से कलाम को शामिल करने का। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा जज्बे नज़ब कलाम। कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा।

वेल तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से कलाम को एंजॉय किया होगा। अब से आप बात कर लेते हैं दोबारा से अपने टॉपिक की जानिब। सो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फियर ऑफ फेलियर। सो जिसमें सबसे पहले मैंने आपसे शेयर किया कि असल में फियर ऑफ फेलियर होता क्या है और लोग किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आखिर क्यों इस कदर डरते हैं। सो अब जरा हम बात कर लेते हैं कि फेलियर और लर्निंग, इन दोनों में आपस में क्या कनेक्शन है, क्या ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं या फिर ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो बेसिकली एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों में ही एक इम्पोर्टेंट आइडिया ये है कि मिस्टेक्स और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हमेशा हमें फीडबैक प्रोवाइड करती हैं। सो मिसाल के तौर पर आपने इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट आप नहीं होते जस्ट इन केस। इसका एक इंटरप्रिसेप्शन ये भी हो सकता है कि मैं इंटरव्यू के लिए बना ही नहीं हूँ, लेकिन अगर आप दूसरी जानब देखें, दूसरी चीज़ों को देखें, तो दूसरा इंटरप्रिसेप्शन ये भी हो सकता है कि मुझे अब पता चल चुका है कि मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं या फिर वो तमाम सारी चीज़ें जो मैं ठीक तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर सका। सो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप सेकेंड टाइम अटैम्प्ट करोगे या फिर आप सेकेंड टाइम दोबारा से इंटरव्यू दोगे तो सिचुएशन तो सेम होगी लेकिन आपका रिजल्ट टोटली डिफरेंट होगा। सो इसी इंटरप्रिटेशन को एक अफेक्ट आप अपनी अगली ज़िंदगी में भी शामिल कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभार जिसे हम फेलियर समझते हैं वो दरअसल फेलियर नहीं होता बल्कि एक लर्निंग प्रोसेस बन जाता है जो कि आपको कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद सीखने का मौका देता है। सो दे लिसनर्स, यहाँ इस के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल शामिल करती हूँ। सो सपोज करें कि एक स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है, उसका फियर है कि मैं अगर स्टेज पर जाकर कुछ बोल रहा हूँ और अचानक से मैं भूल गया या फिर मैं भूल गई तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, टीचर्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे और इसे फियर की वजह से हमेशा प्रेजेंटेशन से वो बच्चा कतराता है। सो अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूँ तो मैं दूसरे लोगों की एग्जांपल आपसे शेयर नहीं करती बट मैं आपसे अपनी एग्जांपल शेयर करती हूँ। सो फॉर मी कि अगर मैं जब भी कभी प्रेजेंटेशंस देती हूँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता था कि मुझे कॉन्स्टेंटली थोड़ा सा फियर महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मे बी हो सकता है कि जब मैं स्टेज पर जाकर कुछ प्रेजेंट कर रही होंगी तो हो सकता है कि मैं कोई मिस्टेक कर दूँ जिसकी वजह से सब मुझ पर हंसें। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती थी कि मुझे प्रेजेंटेशंस ना ही देनी पड़े। लेकिन अब ये क्या है, एक फियर ऑफ फेलियर। लेकिन अब मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इस फेलियर के डर को ख़त्म कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले आप किसी भी मिरर के सामने जाके खड़े हों, सामने खड़े होने के बाद आप प्रैक्टिस करें या फिर आप किसी दोस्त के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3 से 4 क्लासमेट्स को अपने प्रेजेंटेशन सुना सकते हैं और फिर उसके बाद जब आप एक एक्चुअल प्रेजेंटेशन अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपकी परफेक्ट ना हो लेकिन टाइम के साथ साथ आपके अंदर से वो डर, वो फियर ख़त्म होता चला जाएगा। सो कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ज़िंदगी में तो आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। सो इसी तरह की ये तो एक छोटी सी मिसाल मैंने आपके साथ शेयर की। अमली ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां हम जब भी कोई नया कदम उठाते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम बिज़नेस की बात कर लेते हैं। सो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जब भी कुछ नया स्टार्ट करने लगते हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो कि हमने डिस्कस किया था कि वट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। सो एंटरप्रेन्योरशिप में होता ये है कि आप किसी भी नए आइडिया को एक अमली शक्ल पहनाते हैं, उस आइडिया को तमाम तरह लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो जब आप वो आइडिया एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तो उस वक्त भी देर आर अ लॉट ऑफ फियर्स जो आपके माइंड में गर्दिश करते हैं कि अच्छा, जो मैं एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, हो सकता है कि मेरा प्रोडक्ट सक्सेसफुल ना हो, हो सकता है कि जिस तरह से मैंने चीज़ें सोची हों उस तरह से चीज़ें ना हो। सो इस तरह की अमली ज़िंदगी में बहुत सारे फियर्स आते रहते हैं और हम इस चीज़ से डरते हैं कि हमसे जुड़े बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस कहीं डैमेज ना हो जाएं। लेकिन मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस फियर को कम कर सकते हैं, आप खुद को बदल सकते हैं। सो जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से आप जब कोई न्यू प्रोडक्ट या फिर कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आप अपने दोस्तों वगैरह से डिस्कस कर सकते हैं, किसी ट्रस्टेड बंदे से बातचीत कर सकते हैं। वेल, हो सकता है कि वो आपको अच्छा ओपिनियन दे या फिर आपकी कुछ मदद कर दे। सो इस तरह से आप अपने इस डर को, इस फियर को कम कर सकते हैं।

और लास्टली हम बात कर लेते हैं कि फेलियर का एक्चुअली मतलब क्या होता है। सो फेलियर का मतलब हमेशा ट्राई करते रहना नहीं। यहाँ एक मेच्योर डेस्टिनेशन में आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, नेवर गिव अप सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हर सिचुएशन में ब्लाइंडली सेम चीज़ रिपीट करना ज़रूरी नहीं होता। सो कभी कभी गोल चेंज कर लेना भी एक सेंसिबल ऑप्शन होता है। कभी आप स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं, कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपनी टाइमिंग्स को चेंज कर लें, या कभी आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इट्स ओके अगर चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही तो मे बी आप थोड़ा सा चेंज कर ले, कुछ नया कुछ अलग से ट्राई करें, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मेरे लिए सूटेबल नहीं। सो फेलियर से सीखने का मतलब ये नहीं कि हम हर हाल में सेम रोड पर ही चलते रहें। कभी कभार मतलब ये भी हो सकता है कि हम अपने एक्सपीरियंस से इंफॉर्मेशन लें और बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें। सो वेल लिसनर्स, ये थे हमारा आज का टॉपिक विच इज़ द फेलियर ऑफ फियर ऑफ फेलियर। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और इस हवाले से मेरे पास तो जो तमाम तर मालूमात थी मैंने आपसे शेयर की, अब आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं कि अमली ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ आपके साथ जब आपने कोई न्यू काम किया हो, कोई टास्क स्टार्ट किया हो और स्टार्टिंग में आपको एक डर, एंजाइटी, स्ट्रेस फील हुआ हो, और अगर आपने इस तरह की कोई भी सिचुएशन एक्सपीरियंस की है तो आपने उसको किस तरह से टैकल किया है, किस तरह से आप उस सिचुएशन से बाहर आए हैं। सो हो सकता है कि जब आप अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें और हम बाकी के तमाम तरह लिसनर्स के साथ, तो उन्हें एक बहुत अच्छा एक नया पर्सपेक्टिव मिले। तो एक बार फिर से बताते चलती हूँ कि 01157100971 ये है मेरा और आपका रابطے का नंबर। सो इस नंबर के थ्रू आप मुझे जल्दी से जाकर मेरे किए गए सवाल का जवाब दें और फिर मैं उसको प्रोग्राम में शामिल करती हूँ। सो तब तक जब तक आप हमें क्वेश्चन का आंसर करते हैं, अगर आपको आज के टॉपिक के हवाले से कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सो बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से, जैसा कि है आज फ्राइडे। सो फ्राइडे के हवाले से जो हर फ्राइडे को मैं आपको एक रिमाइंडर देती हूँ, साथ ही साथ एक चैलेंज भी, जो कि हम हर फ्राइडे को स्टार्ट करते हैं, जहाँ हर फ्राइडे हम एक नया अच्छा काम शुरू करते हैं। सो जैसे कि लास्ट फ्राइडे का चैलेंज ये था कि आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी सोसाइटी इर्द गिर्द कॉलोनी में चेक करना है कि हो सकता है मे बी देर इज़ समवन हु नीड्स योर हेल्प, और आपने जाकर उसके हेल्प करनी है। सो आप उसका फीडबैक भी मुझसे शेयर करें कि कैसा लगा आपको पूरा वीक इस प्रैक्टिस को रिपीट करके, क्योंकि आई फील लाइक वी आर। सो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम सब भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। सो जब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम कामयाबी की सीढ़ी पर चलते चले जाएंगे। सो आज के फ्राइडे के हवाले से मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि आपने इस फ्राइडे सबसे पहला काम ये करना है कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है। सो आई नो यहाँ यूके में हमारी लाइफ बेहद डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि डेली बेसिस पर बहुत सारा काम करना होता है, सुबह ऑफिस जाना होता है, सेकेंड टाइम यूनिवर्सिटी, फिर इसके अलावा पर्सनल लाइफ के भी बहुत सारे काम होते हैं। सो आज का फ्राइडे आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा रिमाइंडर है, प्लस चैलेंज है कि आपने कोशिश करनी है कि ये वीकेंड आपने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, खास तौर पर अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारा इतना ख्याल रखते हैं। जब हम छोटे होते हैं हमें उनकी मदद की एहसास की ज़रूरत होती है, तब उस वक्त वो हमारा ख्याल रखते हैं। सो जब हम बड़े हो जाते

सो वेल लिसनर्स, इस खूबसूरत सी बात के साथ प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हर फ्राइडे हम बात करते हैं फ्राइडे क्लो की। सो कमर्शियल ब्रेक से वापसी पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुछ अच्छी अच्छी सी प्यारी सी ब्यूटी टिप्स जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी। सो उसके लिए स्टे ट्यून टू द फजा 97.1 FM। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: अगर

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी सुनते हुए सवातों को खुश आमदीद। डियर लिसनर्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम दीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 87.1 FM पे। सो वेल लिसनर, जैसा कि कमर्शियल ब्रेक से पहले हम बात कर रही थी आज के दिन के हवाले से, जैसा कि है आज फ्राइडे। सो फ्राइडे इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रिकॉशियस डे टू ऑल द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आप सभी को मैं यही सजेस्ट कर रही थी कि आप कोशिश यही किया करें कि पूरा हफ्ता तो आप दुनिया के कामों को तवज्जो देते हैं, अपना पूरा फोकस रखते हैं अपने टारगेट को अचीव करने में, गोल्स को अचीव करने में, लेकिन वाहिद फ्राइडे का दिन एक ऐसा दिन है जो कि एक बहुत ही खास मुकद्दस दिन समझा जाता है। सो आप कोशिश किया करें कि आप फ्राइडे के दिन अपने दुनिया के तमाम तरह कामकाज से थोड़ा सा ब्रेक ले लें, जहां आप कुछ ऐसा वक्त निकालें जो आप अल्लाह के साथ स्पेंड करें, जहां आप उस हस्ती से ढेर सारी बातें करें जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, और आप वापस से उस मकसद की तरफ गामजन हो जिस मकसद के तहत आप में हम सब इस दुनिया में आए हैं।

सो डियर लिसनर्स, आज के दिन में भी यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें, ढेर सारी दुआ करें, क्योंकि दुआ इबादत का मकसद होती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानी हो, तमाम तरह मुश्किलात हल हो जाएं, सो उसके लिए आप ढेर सारी दुआ किया करें, क्योंकि अगर आप ढेर सारी दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला को बेहद अच्छा लगता है जब उनका कोई भी बंदा उनसे कुछ मांगता है। सो जब आप ढेर सारी दुआ करेंगे, ढेर सारी इबादत करेंगे, तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा मसाइल तो खुद ब खुद हल होते चले जा रहे हैं। सो अब ज़रा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं आज के सेकेंड सेगमेंट की जानिब। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दीवा डायलॉग मैं हर फ्राइडे हम बात करते हैं फ्राइडे क्लो की, क्योंकि वीकेंड्स आ रहा होता है और वीकेंड्स पे आपके पास होता है ढेर सारा टाइम। सो मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ ऐसे ब्यूटी रेमेडीज जिन्हें आप आसानी वीकेंड पे कर सकते हैं, अपनी स्किन को खूबसूरत ग्लोइंग बना सकते हैं। सो हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारी रेमेडीज। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक अदद खूबसूरत सा कलाम, कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और फिर स्टार्ट करते हैं द फ्राइडे क्लोज सेगमेंट।

चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का द फ्राइडे क्लोज सेगमेंट, जहां मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत सारी ब्यूटी रेमेडीज। सो माय लवली डिवास बी गेट रेडी। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की कुछ रेमेडीज की। लेकिन उससे पहले हमें अभी अभी एक बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश मौसूल हुई है, तो उसे प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये एक न्यू सूफी कलाम है जिसके मुतालिक फरमाइश की गई है कि इसे प्रोग्राम में शामिल किया जाए। सो सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम, फिर उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ रेमेडीज़।

लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल रिकमेंडेशन, और बहुत ही खूबसूरत कलाम था। अब जरा आगे बढ़ते हैं आज की स्किन केयर रेमेडीज की जानिब। सो माय लवली डिवाज, अगर आपकी स्किन टाइट या फिर ड्राई फील हो रही है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ट्रीट नहीं कर सकती, आपको एक जेंटल ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मास्क शेयर करती हूँ। इस मास्क के लिए आपको सिंपल से कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि आपकी स्किन को एक सूथिंग इफेक्ट देगा। आपको चाहिए 1 टेबलस्पून फाइनली ग्राउंड ओट्स, थोड़ा सा प्लेन योगर्ट, साथ ही साथ सिंपल वाटर। बेसिक से इंग्रेडिएंट्स आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। सो ये मास्क उन सभी लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो तमाम तरह के एक्टिव्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। सो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ग्लाइकोलिक एसिड, नाइसिनमाइड और इस तरह के जो हैवी एक्टिव्स हैं उनकी वजह से मसी ड्राई हो चुकी है, सो उसके लिए आप ये मास्क यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है और एक सॉफ्ट सा पेस्ट बना लेना है।

सो मास्क रेडी करने के बाद आपने इसे फेस पर जेंटली अप्लाई करना है। इसे स्क्रब की तरह एग्रेसिवली रब बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तकरीबन आपने इसे 10 से लेकर 15 मिनट तक अपने फेस पर लगे रहने देना है। 10 से 15 मिनट के बाद जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो नॉर्मल वाटर से आप इसे इजीली वॉश कर लें, ठीक है। आपको स्क्रब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मास्क उन तमाम तर लिसनर्स के लिए है, उन तमाम तर लोगों के लिए जिनकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है। सो अगर आप रब करेंगे या फिर स्क्रब करेंगे तो मे बी योर स्किन बिकम्स इवन मोर सेंसिटिव। सो बेसिकली ये कोई मेडिकल फेयरनेस ट्रीटमेंट नहीं है, इसका पर्पज स्किन को जेंटली सूट करना है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले स्मॉल एरिया या फिर आप एक पैच टेस्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि लेमन बेकिंग सोडा या फिर हार्श स्क्रब को फेस पर कभी भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि समटाइम्स लोग इस तरह के इन्ग्रीडियंट्स ऑलरेडी फेस पर यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है

जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है. सो इस वजह से भी उन्हें ऐसा लगता है कि माई स्किन लुक्स सुपर डल एंड माई स्किन लुक्स सुपर ड्राई. वेल, मैं आपसे एक अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली भी है, कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन अगर आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करते या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं, सो यू मस्ट नीड अ गुड मॉइस्चराइज़र. क्योंकि ऑयली स्किन भी जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज नहीं रहती तो डिहाइड्रेट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा डल डल लगती है. सो इन तमाम तरह की क्यूरीज को, इन तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल करेगा हमारा ये मास्क. सो ये मास्क आपकी स्किन को खूबसूरत बनाएगा, नेचुरल लुक देगा और आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करवाएगा कि आपकी स्किन ड्राई है या फिर पैची है.

सो आपसे हम बात करते हैं दूसरी तरह की, यानी कि सेकंड ब्यूटी रेमेडी की, ठीक है। सो सबसे पहले हमने बात की एक ऐसे ब्यूटी मास्क की जो आपको बाहर से ग्लोइंग बनाएगा। अब से बात करते हैं एक ऐसे ब्यूटी मास्क की जो आपको अंदर से ग्लो देगा। सो एक ऐसी चीज़ जो हम अक्सर ब्यूटी रूटीन में भूल जाते हैं वो है हाइड्रेशन। स्किन की ओवरऑल अपीयरेंस पर हमारा लाइफस्टाइल भी अफेक्ट करता है, इसीलिए एप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी पीना, फ्रूट्स और वेजिटेबल, अपनी डाइट को अच्छा करना भी बेहद ज़रूरी होता है। और सिर्फ पानी ही नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी आपके ओवरऑल हेल्थ को डैमेज करते हैं, ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सो इफ़ यू टेक अक्विड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन तो आपकी स्किन नेचुरली बिकम सुपर हाइड्रेट, बिकम सुपर स्मूथ। सो जहाँ आप उन तमाम तरह चीज़ों को प्रेफर करते हैं, ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स को, एक्टिव्स को, इसके साथ साथ ऑर्गेनिक रेमेडीज़ को, वहीं सबसे पहले यू मेक श्योर कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। सो अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तभी आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कुछ भी अप्लाई करते हैं, जस्ट यू अप्लाई अ सनस्क्रीन, जस्ट यू अप्लाई अ मॉइस्चराइजर एंड द अदर एक्टिव्स, सो उस सूरत में आपकी स्किन कभी भी नहीं खूबसूरत दिखेगी।

0: सो इसलिए आप हमेशा कोशिश किया करें कि आप अपनी स्किन का अंदरूनी तौर पर भी ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, और सबसे बढ़कर जब आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे तब आप अंदर से ग्लो करेंगे, और फिर उसके बाद जब आप अंदर से ग्लो करेंगे तो फिर उसके बाद जो मैंने आपसे आज एक मास्क शेयर किया है ये आपको बाहर से ग्लो करवाएगा। सो अब आपने किस तरह से इसे अप्लाई करना है, आपने इसे वीक में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। सो जी लवली डिवास, ये थी हमारी आज की ब्यूटी टिप। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। वेल, इसको लाजमी आपने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद आपने मुझसे शेयर करना है अपना फीडबैक। सो अभी फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो हम बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द फजा 97.1 FM एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक।
1: Commercial time.
2: Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant. Friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
3: Where is AMH Solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
4: Sure, their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

तूफानों से, ये तो तेरी उड़ान का इम्तिहान है। सिर्फ सांसें चलने का नाम जिंदगी नहीं, गिरते हुए संभलने का नाम जिंदगी है। बिखरता है वही।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद। मैं हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा। आप सुन रहे हैं यानी ट्यून कर रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम टीवा डायलॉग, जो कि ऑन एयर होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन पे, जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM, जहां आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ होती है मेरी और आपकी कम्युनिकेशन। और फिर प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं कुछ ऐसे दिलचस्प टॉपिक्स जो हमारे लिसनर्स को हम पसंद, साथ ही साथ खूबसूरत कलाम के साथ फ्राइडे का दिन स्पेंड किया जाता है। सवाल लिस्नर, अभी प्रोग्राम में वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट की जाने बढ़ने का, विच इज कॉल्ड द स्पाइस किचन, जहां हर दिन हम बात करते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ मुनफरिद चटपटे तीखे खानों की और मजेदार जायकों की। सो आज भी हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही चटपटी सी रेसिपी, जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अभी। सो जल्दी से आप अपनी नोटबुक, डायरी, कॉपी, पेंसिल रेडी कर लीजिए, क्योंकि आज की रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस। और मोस्टली ये हम एशियन कम्युनिटीज़ की फेवरेट रेसिपी भी है, क्योंकि हम में से सभी इसे ट्राई करते हैं अपने घर में, लेकिन किसी नए अंदाज से, नए तरीके से। सो अब सबका तरीका, सबका मेथड थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बट रिजल्ट सबका बहुत ही डिलिशियस होता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपसे अपना मेथड शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से इस रेसिपी को ट्राई करती हूँ। सो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक, डायरी, कॉपी, पेंसिल रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इंग्रेडिएंट्स। सो जितनी देर में आप अपनी नोटबुक रेडी करते हैं, उतनी देर में एक अदद खूबसूरत सा कलाम सुन लेते हैं हम, और कलाम से वापसी पर फिर आपसे शेयर की जाएगी आज की ज़बरदस्त रेसिपी। तब तक के लिए आप ये भी गेस कर सकते हैं कि आखिर मैं किस रेसिपी की बात कर रही हूँ। सो अगर आपने ठीक गेस कर लिया तो आप टेक्स्ट करके बता दीजिएगा। सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम।

लिसनर, आज हम बनाने जा रहे हैं स्मोकी चिकन बिरयानी। सो आई नो आप सभी ने बिरयानी तो काफ़ी मरतबा ट्राई की होगी, लेकिन आज हम इसे बनाएंगे थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना डिफरेंट स्टाइल आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 750 ग्राम चिकन, जो कि आप बोनलेस इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। 1.5 कप योगर्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून टर्मेरिक, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका, और आखिर में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। सो वेल लिसनर्स, ये वो सभी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। अब बात कर लेते हैं चावलों की, ठीक है। सो चावल के लिए हमें चाहिए 3 कप बासमती राइस, नमक हस्बे ज़रूरत, लेकिन यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच, 2 से 3 ग्रीन कार्डिमम्स, 1 सिनेमन स्टिक, साथ ही साथ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। सो अब बात कर लेते हैं बिरयानी मसाला की, ठीक है। सो उसके लिए हमें चाहिए 2 लार्ज अनियंस, साथ ही साथ 2 अदद टमाटर, 2 ग्रीन चिलीज, 1.5 कप फ्रेश कोरिएंडर, 1.5 कप मिंट लीव, 1.5 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 कप क्रीम एंड 1.5 कप मिल्क। अगर आगे इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ तो 1.5 टीस्पून बिरयानी एसेंस, अ पिंच ऑफ ज़ाफ़रान, और स्मोकी फ्लेवर के लिए हम एक स्मॉल साइज का कोयला इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। सो दे लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट्स जो कि आज के हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। सो मैंने आप जो शेयर कर दिए हैं, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपसे कुछ मिस हो जाता है, या फिर होता है ना कि समटाइम्स कि जल्दी जल्दी में जब मैं आपसे इंग्रेडिएंट्स शेयर कर रही होती हूँ तो कुछ आगे पीछे हो जाते हैं। सो अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो सिंपली आप 0115710971 इस नंबर के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सो अब जरा आगे बढ़ते हैं फुल प्रोसीजर की जानिब। तो सबसे पहले हम कर लेंगे चिकन मैरिनेशन। एक बाउल लेंगे जिसमें हम शामिल करेंगे चिकन, योगर्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, रेड चिली पाउडर, हल्दी, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, नमक, और साथ ही साथ कुकिंग ऑयल। और आप बस अच्छी तरह से इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे आपस में मिक्स। चिकन को आपने कम से कम 30 से लेकर 40 मिनट तक मैरिनेट करके रखना है, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। इसके बिना ना तो स्पाइसेस अच्छी तरह से इन्हेंस हो सकेंगे, और ना ही आपको एक अच्छा बैलेंस और परफेक्ट टेस्ट मिलेगा। वेल, अगर आपके पास हो बहुत सारा वक्त तो आप 2 से 3 घंटे भी मैरिनेशन रख सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका फ्लेवर बेहद इन्हेंस हो जाता है। सो ये था फर्स्ट स्टेप जिसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं जिसमें हम राइस प्रिपेयर करेंगे। सो इस स्टेप पे हम ये करेंगे, बासमती चावल को अच्छी तरह से धो लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेकर 30 मिनट तक सोक करके रखेंगे। एक लार्ज बर्तन में पानी शामिल करेंगे जिसे हम कर लेंगे बॉयल। सो आपने ख्याल रखना है कि जब आप पानी उबाल रहे हों तो आपने इसमें नमक शामिल कर देना है, साथ ही साथ कार्डिमम, सिनेमन इन, और साथ ही साथ कुकिंग ऑयल। तो इन तीनों चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने पानी को अच्छे से उबाल लेना है। जब पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए तो उसमें आप शामिल कर दें चावल, और उसे अप्रॉक्सीमेटली 70-80% तक आप कुक कर लें। सो आपने कोशिश करनी है कि आपने चावलों को 3/4 कुक करना है, हल्की सी कनी बाकी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले ही ओवर कुक कर देंगे तो हो सकता है कि बाद में आपकी बिरयानी के चावल उस तरह से खिले खिले और निखरे निखरे ना लगे। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 70-80% ही कुक करें। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, चिकन मसाला। अब हम ये करेंगे कि एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे जिसमें हम कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। फिर इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, और प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक प्याज सुनहरे ब्राउन हो जाए। सो जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन हो जाए आपने इसमें शामिल कर देना है मैरिनेटेड चिकन। साथ
साथ ही साथ आपने आंच को कर देना है धीमा और इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ठीक है। अब इस बीच हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो, साथ ही साथ ग्रीन चिलीज और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो कवर करके चिकन को कुक होने दें जब तक चिकन टेंडर ना हो जाए और मसाले आपके अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी स्टेप है। यहीं से आपका टेस्ट डेवलप होगा और बिरयानी को असली शक्ल मिलेगी। अब आपने क्या करना है, फ्लेम को थोड़ा सा लो करके इसमें क्रीम और मिल्क शामिल कर देना है। धीरे से मिक्स करें, 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर ले। मसाला बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए आपकी इस बिरयानी का, क्योंकि हम आज एक डिफरेंट तरह की बिरयानी ट्राई कर रहे हैं। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो मसाला है वो बिल्कुल भी ज़्यादा वाटरी ना हो बल्कि क्रीमी और थिक हो। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो कि है लेयरिंग। अब आपने करना है चिकन मसाले के ऊपर हाफ कुक राइस की एक अच्छी सी लेयर लगा देनी है। उसके ऊपर आपने मिंट, फ्रेश कोरिएंडर, फ्राइड अनियंस, गरम मसाला और इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर देना है। फिर आपने क्या करना है, बाकी के तमाम तरह बचे हुए चावल की एक सेकेंड लेयर बना देनी है। टॉप पर थोड़ा सा मिंट, कोरिएंडर, फ्राइड अनियन आप दोबारा से शामिल कर दें, ठीक है। और इस तरह से आपने इसी तरतीब के साथ लेयर्स लगा लेनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। सो यहाँ तो मैंने 2 लेयर्स लगाई और हमारे चावल हो गए कंप्लीट। अब जब बात करते हैं द सीक्रेट स्मोकी टच की, कि किस तरह से हम इस बिरयानी को स्मोकी बिरयानी बनाएंगे। अब एक स्मॉल पीस ऑफ चारकोल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, उसे एक स्मॉल हीट प्रूफ बाउल में रख कर चावलों के अंदर प्लेस कर देंगे, ठीक है। कोयले से आप उसके ऊपर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। जब स्मोक स्टार्ट हो तो फौरन से आप लिड को कवर कर दें। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक स्मोक की इन्फ्यूजन इनफ है। फिर आप आराम से चारकोल को निकाल के इसे फेंक दें। इससे ये होगा कि वो स्मोकी टच ऑटोमेटिकली आपके चावलों में शामिल हो जाएगा। अब बारी आती है सबसे फाइनल, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की, विच इज कॉल्ड दम। सो अब बर्तन को टाइटली कवर कर दे, लो फ्लेम करके 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह दम दे। दम के बाद चावलों को जेंटली मिक्स करें ताकि आपके तमाम तर चावल स्पाइसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं और बस आपकी स्मोकी क्रीमी चिकन बिरयानी हो गई तैयार। अब आपने किस तरह से इसे प्रेजेंट करना है, फ्रेश रायता के साथ, मिंट चटनी के साथ या फिर स्लाइस्ड अनियंस के साथ। अगर आप चाहें थोड़ा सा टैंगी टेस्ट तो उसके लिए आप लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं। और अगर आप इससे मजीद और स्पेशल बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सा ऊपर से क्रिस्पी फ्राइड अनियन और फ्रेश मिंट गार्निश करें। बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी दिखने में भी और टेस्ट में भी। चलो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वेल, हमने भरपूर कोशिश की कि हम रेसिपी को थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में बनाएं। आई नो आपने बहुत सारी बिरयानी ट्राई की होगी, बट आई एम श्योर जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप फील करेंगे कि टेस्ट इन्हेंस है, काफ़ी हद तक डिफरेंट है और रेगुलर जो हम बिरयानी ट्राई करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। सो आप सभी से यही कहूँगी कि आज ही इस रेसिपी को ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद फीडबैक हमसे शेयर करना मत भूलिए। वैसे भी आज फ्राइडे है और फ्राइडे को अक्सर औकात मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हम लोग एक साथ मिल बैठ कर खाना खाते हैं। सो इट्स अ गोल्डन चांस कि आप आज ही बिरयानी ट्राई कर ले। इससे ये होगा कि ना सिर्फ आपको फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा बल्कि साथ ही साथ खाने में भी कुछ डिलिशियस मिलेगा। सो लिसनर्स, इसी के साथ ही हमारे आज के रिवा डायलॉग का वक्त हुआ जाता है अपने इख्तिताम के करीब। वेल, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई भी हो सवाल तो आप हमसे पूछ सकते हैं 0115710971 इस नंबर के थ्रू। साथ ही साथ अगर आपको रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है radiofaza.co.uk। इस वेबसाइट के थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि आप बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा और जान सकते हैं कि आपका पसंदीदा आरजे कौन से दिन किस प्रोग्राम में है आने वाला। सो हर तरह की मालूमात आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट पे।
साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस हासिल हो बिना किसी इंटरप्शन के, तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि है radiofaza.com/radiofaza97.1 FM. सो मैंने वेबसाइट और एप्लीकेशन को आपस में थोड़ा सा मिक्स कर दिया था. सो एक बार फिर से आपसे शेयर कर देती हूँ, रेडियो फजा 97.1 FM ये है हमारी एप्लीकेशन जिसे इंस्टॉल करने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. आप कहीं पर भी बिना किसी रुकावट के हमें ट्यून कर सकते हैं. ऐसे के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है. उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ ये कि आज फ्राइडे है, सो कोशिश करिएगा कि आप ढेर सारी इबादत करिए, अपने दिन को अच्छे कामों में स्पेंड करें, फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और आगे है वीकेंड, सो वीकेंड पर भी बहुत अच्छे सारे प्लान्स बनाएं क्योंकि वीकेंड पूरे हफ्ते के बाद आता है और जहां आप पूरा हफ्ता काम करते हैं वहां ज़रूरी है कि आप दो दिन आराम करें, खुद को टाइम दें और उन तमाम चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं. सो वेल लिसनर्स, मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाजत. आपसे मुलाकात होती है वीकेंड के बाद इसी उम्मीद के साथ कि आपका वीकेंड बेहद अच्छा और खूबसूरत गुजरे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. सो जाते जाते आप सभी के लिए एक खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम प्ले कर देती हूँ. आप इस खूबसूरत से कलाम को एंजॉय करें और मुझे अलविदा करें. टेक केयर, बाय बाय.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

वेलकम करते हैं उन तमाम समातों का जिन्होंने आज रवि फजल 97.1 FM को ट्यून किया। अवल प्रोग्राम में जो है वो टॉपिक बड़े मज़े से आज मैंने रखना है। मैंने काफ़ी दिनों से ये टॉपिक सोचा, मेरी दो दिन से आपके साथ मुलाकात नहीं हो रही, उसकी वजह आपको मेरी आवाज़ सुनकर मालूम हो ही गई होगी। और लंच बॉक्स में लेके आते हैं हम मज़े की इन्फॉर्मेशन। इस लंच बॉक्स को ओपन करते साथ ना सिर्फ बीच में से खाना निकलता है बल्कि बहुत कैसी बातें, बहुत कैसी इन्फॉर्मेशन जो आपने मुझ तक पहुंचानी होती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें सारी चीज़ें मुझे ही पता हो। कभी कभार कुछ बातों का इल्म मुझे नहीं होता और कभी कभार जो है वो कुछ बातों का इल्म आपको नहीं होता। वल उसी के साथ साथ दिन है आज जुमे का और इस जुमे के दिन को हम अच्छे से लेकर चलेंगे आगे। जुमे के दिन को अच्छा बनाने की ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं है। ज़िंदगी जो है वो मोस्टली इस दिन जो है ना वो बड़ी सुकून वाली लगती है। सवाल दोपहर का वक्त है, खाने का वक्त है, थोड़ा सा आराम करने का वक्त है और सबसे बढ़कर अपने लिए चंद लम्हे निकालने का वक्त है। तो अगर आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, सफ़र कर रहे हैं या अपने कामों में मसरूफ हैं तो अपने रेडियो की आवाज़ ज़रा सी बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगले दो घंटे हम बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ नया सीखेंगे और मौसीकी के रंग भी जो है वो बिखेरते रहेंगे। कहते हैं कि खाना जिस्म को ताकत देता है लेकिन अच्छी गुफ्तगु दिल और जहन को ताजगी देती है। तो सामीन आइए अपने आज के दिन को खूबसूरत बनाते हैं खूबसूरत सी सोच के साथ। आज का पहला पैगाम, जिंदगी को सिर्फ गुजारे नहीं उसे महसूस भी करें, क्योंकि जिंदगी हमेशा बड़ी खुशियों का नाम नहीं होती। कभी कभी जो है किसी अपने की मुस्कुराहट, चाय का एक कप, पसंदीदा गाना या किसी की अच्छी बात भी पूरा दिन खूबसूरत बना देती है। तैयार हो जाइए क्योंकि इस प्रोग्राम में सलोराज हैं आपके साथ साथ ही ठीक 2 बजे तक। सामीन कभी गौर किया है आपने कि हम बड़ी खुशियों के इंतजार में छोटी छोटी खुशियों को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब बड़ी कामयाबी मिलेगी तो खुश होंगे, जब हमारे सारे काम जो है मुकम्मल होंगे तो सुकून से बैठेंगे, जब हालात जो है वो बेहतर होंगे तब मुस्कुराएंगे। लेकिन ज़िंदगी हमें रोज़ कुछ ना कुछ एहसास ज़रूर देती है जिसके लिए हम शुक्र अदा कर सकते हैं। सुबह आँख खुलना, अपनों की हैरियत सुनना, अपनी पसंद की चाय पीना, अपने पसंदीदा कप में चाय पीना, किसी दोस्त का पैगाम आना या एक मुश्किल दिन के बाद सुकून के चंद लम्हे मिलना, ये सब मामूली नहीं ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन हिस्सों में से एक हिस्सा है। हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हर चीज़ का मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं बनाना चाहिए। खुशी जो है हमेशा मंजिल पर पहुंचने में नहीं होती, कभी जो है सफ़र के खूबसूरत लम्हों में भी मिलती है खुशी। तो सामीन आज अपने लिए एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा कि किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप शुक्र अदा कर सकें। माने कि कभी कभार जो है वो हमारी सोच का रवैया बदलने से हमारा पूरा दिन बदल सकता है। पॉलिसी के साथ साथ बताइएगा जिन्हें लोगों ने आज रबी फजल 97.1 FM को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम समाचार का। और बताइएगा क्या हाल चाल है, कैसा गुजर रहा है आपका दिन। घर बैठी खवातीन जो मुझे सुन रही हैं बताइएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुन रही हैं। मैं भी शायद आप तो इस टाइम पे खाना बनाने का ही सोच रही हूँ कि दोपहर के खाने में क्या बनाया जाए या फिर ऐसी कौन सी रेसिपी जो है वो प्रोग्राम में शामिल करवाई जाए आपकी तरफ से, जो मैं अपने बाकी लिस्टर तक भी शेयर कर सकूँ। सो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा मेरा और आपका एक रबते का बड़ा ही खूबसूरत सा छोटा सा नंबर है 01157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेव और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहां से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से रेडियो फजल 97.1 FM के नाम से,
गूगल पर सर्च कर सकते हैं radiobazaar.co.uk आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहां पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, वो आपको वहां से मिल जाएगी। सामीन, प्रोग्राम का आगाज जो है वो एक खूबसूरत से कलाम के साथ करेंगे और आपकी ढेरों बातें जो है प्रोग्राम में शामिल करवाएंगे। बट प्रोग्राम में जो है वो कोई कोटेशन, कोई सलाम, कोई दुआ, कोई पैगाम किसी प्यारे का नाम करवाना चाहें तो वो भी मुझे लाजमी बता दीजिएगा। जैसे ही आपका मैसेज मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, मैं चुपके से फ़ौरन से उसको प्रोग्राम में शामिल कर दूंगी। दिलों को थाम लीजिए क्योंकि आज का दिन जो है होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि इसके बाद आ जाना है वीकेंड, और वीकेंड जो है वो थोड़ा सा सुस्त गुजरता है अगर किसी ने कहीं जाना ना हो। जो लोग मेरी तरह सादे से होते हैं ना, वो घरों में ही रहते हैं, घर का खाना एंजॉय करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे दरमियान जो वीकेंड पे जो है मोस्टली डेली जो है वो बैठ का ही खाना खाते हैं। पर लंच बॉक्स की बात करेंगे, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो है आपके सामने रखेंगे जिनको सुनने के बाद, जिनको याद करने के बाद आपको जो है वो गुजरा हुआ पल याद आ जाएगा। सवल, अभी के लिए प्रोग्राम में एक खूबसूरत सा कलाम शामिल करते हैं सनम मारवी की आवाज़ में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कलाम पसंद आएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड ऐप। साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फ़िज़ 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। और उम्मीद करते हैं कि जो कलाम अभी प्रोग्राम में शामिल किया था वो आपकी समातों की नज़र हुआ होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है, और वो है अच्छी सोच। अच्छी सोच का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में मसाइल नहीं आते या मसाइल नहीं आएंगे, हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, बल्कि अच्छी सोच का मतलब ये है कि मुश्किल हालात में भी हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी काम में नाकामी हो जाए तो ये ना सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि ये सोचें कि हम अगली बार क्या बेहतर करेंगे इसमें। अगर कोई दिन अच्छा ना गुजरे तो ये ना समझें कि हमारी पूरी ज़िंदगी ही ख़राब है। याद रखें कि एक हर दिन पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं करता। हर नया दिन हमें एक नया मौका देता है कि हम कल से कुछ बेहतर करें। सामीन, अच्छी सोच का दामन कभी मत छोड़ें, क्योंकि ज़िंदगी में जो है वो उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। कभी कभार जो है हम लोग मुश्किल को देखकर अपने आप को जो है ना वो डामाडोल कर देते हैं कि हम इस चीज़ को पार ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है, और इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आ हुई थी। कमर्शियल ब्रेक इस बार मेरी रही आपसे एक बार फिर से मुलाकात। हम आपको कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना वो मेरे आपके दरमियान काफ़ी ज़्यादा टाइम है, और इस टाइम को जो है वो संभाल के मैंने रखना है, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि वक्त से चलती है, और वक्त अगर हाथों से निकल जाए तो काम का जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। सो हमारा जो आज का टॉपिक था इनविजिबल बैटल्स, सो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है वो बहुत ही ऐसी अहम पहलू भी आते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी। बट अभी इसी के साथ साथ जो है ना प्रोग्राम में मेरे पास पैगामात भी शामिल करवाए जा रहे हैं। अगर प्रोग्राम में शामिल होकर कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें तो मुझे लाजमी बताइएगा, या फिर कोई कोटेशन, कोई सलाम, कोई दुआ, या फिर किसी चाहने वाले को कोई ऐसा पैगाम जो आप खुद नहीं दे सकते तो मुझे चुपके से बता दीजिएगा, मैं आराम से उसको प्रोग्राम में जो है ना चोरी से प्ले कर दूंगी या बता दूंगी, क्योंकि प्ले तो नहीं करूंगी ना, बताऊंगी अगर कोटेशन मुझ तक पहुंचेगी। सो बोला मुझे लाजमी बताइएगा, पहुंचाइएगा। अगेन आपको एक बार नंबर नोट करवा देते हैं जिन नए लोगों ने आज रवि फजल 97.1 FM को ट्यून किया है, नंबर नोट कीजिएगा। द नंबर इज 01157100971। अच्छा, सुबह से मेरे साथ ये मसला हो रहा है कि मेरी ज़ुबान जो है वो फिसला जाती है, मतलब तो बोलना मैंने कुछ होता है निकल कुछ जाता है। सो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। खैर, बात करते हैं हम इन पहलुओं के बारे में, ज़हनी जंग के बारे में बात की जाए तो इंसान अपने खौफ, परेशानी, दबाव और जो है बुरी सोच को जो है ना हालात में लाता है और फिर उसके साथ लड़ता है। तो अपने जो अंदर ज़हनी जंग है ना इसको ख़त्म करें प्लीज़, क्योंकि अगर ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी तो ये अंदर ही अंदर आपको खा जाएगी। जज्बाती जंग के बारे में अगर बात की जाए तो गम, तन्हाई, मायूसी या किसी अजीज़ की जुदाई ऐसी मुश्किलात है जिन्हें इंसान चाहकर भी दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि बाज़ुकात ज़िंदगी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम दूसरों से डिस्कस नहीं कर पाते, और बाज़ुकात मामला जो है वो थोड़े आगे के होते हैं कि इंसान जो है वो ख़ुद से भी डिस्कस नहीं कर पाता इस चीज़ को। खैर, कोशिश यही करें कि ज़िंदगी में जो है वो ऐसा कोई अजीज़ रखे ही ना। मैं आपको ये बात जो है मस्ट बोलूँगी कि जब आप किसी के साथ दिल लगा लेते हैं ना, तो फिर वो जब आप दिल लगा लेते हैं उसके बाद आपको बहुत सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सी ऐसी जंगें लड़नी पड़ती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता, और उनमें सबसे जो बड़ी जंग आती है उनमें जो सबसे बड़ी जंग आती है ना वो होती है ज़हनी जंग। जब आप अपने दिमाग में, अपने जहन में खुद से खुद ख्यालात आते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और ख्यालात आते नहीं हैं, जब एक चीज़ होते हुए देखें, बुरी चीज़ होते हुए देखें, तो फिर उसके बारे में सोचना, फिर उसको अगर हम ना भी ना सोचें तो फिर भी दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है कि नहीं यार ऐसे नहीं तो ऐसे क्यों हो गया। तो अगर आप पुरसकून रहना चाहते हैं ना, मेरा माने, मेरी जो पर्सनल राय है ना, मेरी माने तो कभी भी जो है ना किसी के साथ दिल ना लगाएं, कभी भी किसी पर उम्मीदें ना रखें, कभी भी किसी के साथ ऐसी उम्मीदें वो बस्ता ना करें जो कल को आपको जो है मुश्किल में डाल दें, क्योंकि बाज़ुकात ऐसा होता है कि अगर इंसान की गलती नहीं होती, क्योंकि उसने हमें कोई भी उम्मीद लगवाई नहीं होती, हम खुद से जो है अपनी लगाई हुई उम्मीद से जो है वो धोखा खा लेते हैं, दुख जाए हमारा दिल दुख जाता है। सो जब ये चीज़ें हो जाती हैं ना, तो फिर इंसान जहन ही जहन में अपने आप से लड़ता रहता है कि उस टाइम पे काश मैंने खुद को संभाल लिया होता तो अब ये चीज़ ना होती। सो जहनी जंग तो है वो चलती ही रहती है, लेकिन उसको ख़त्म भी करना जो है ना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अंदरूनी कश्मकश की बात की जाए ना, तो ये एक वो चीज़ है मेरे ख्याल में कभी इंसान सही और गलत और का अंदाज़ा नहीं लगा पाता, और कभी जो है वो ख्वाहिश और ज़िम्मेदारियाँ या फिर माजी और उसका मुस्तकबिल दोनों दरमियान आके इनके दरमियान बैठ के दोनों चीज़ों का फ़ैसला करना पड़ता है। सो ये होती है कश्मकश, जो आप करना नहीं चाहते, जो आपने करना है वो आप करना नहीं चाहते, और जो आपने नहीं करना आपने करना है और वो करने का आपको मौका नहीं मिलता। तो अभी जो है शायद मेरी भी बातें आगे पीछे हो गई हैं, पता नहीं क्यों। खैर, समझने वाले इस चीज़ को समझ जाएंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि बात आगे पीछे हो गई है।
سو خاموش رہ کے جو جدوجہد کی جاتی ہے نا, یہ بھی تھوڑی سی مطلب ہوتی ہے مشکل. یہ مشکل کس طرح سے ہوتی ہے, جب آپ کسی کے ساتھ, اگر کوئی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے, مطلب مینس کہ آپ دیکھ لیجیے اگر کوئی انسان جو آپ کا بہت عزیز ہے اگر آپ کے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے, تو آگے سے انسان خاموش ہو جاتا ہے. اور یہ ایک قسم کی طبیعت میں بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ, ضروری نہیں ہے کہ آگے سے آنے والا ہے تبھی وہ خاموش ہے یا آگے کوئی خاص بندہ نہیں, کچھ لوگوں کی یہ طبیعت میں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو کوئی بری بات بول دے تو اس کو خاموشی سے پی جانا, اور پھر خاموش رہ کر اپنے ساتھ ہی اس چیز کے ساتھ لڑتے رہنا کہ یار اس نے مجھے ایسا کیوں بولا. سو خاموش رہنا ایک حد تک ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں خاموشی جو ہے نا وہ انسان کو اندر سے اندر ہی اندر سے جو ہے نا وہ کھا لیتی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ سین ہو جاتا ہے کہ آپ

एक बार फिर से खुश लंच बॉक्स लाउंज आवाज आप सुने सलोराज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक को ठीक 2 बजे तक। सवाल इसी के साथ साथ प्रोग्राम में कुछ कलाम शामिल किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कलाम पसंद भी आया होगा। और साथ ही में जो है वो बात करते हैं हम अपने दिन के हवाले से। लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि अगले 2 घंटे हम साथ गुजारेंगे अच्छी अच्छी बातों के साथ और अच्छी अच्छी पैगामात के साथ। लेकिन आप इस वक्त मुझे ये बताइएगा कि जहाँ भी हैं, घर में हैं, दफ्तर में हैं, दुकान पर हैं या गाड़ी में हैं, उम्मीद है कि आपकी दोपहर अच्छी गुजर रही होगी। अगर अभी लंच शुरू नहीं किया तो यूं कर लीजिए कि आप लंच बॉक्स मेरे साथ शुरू कर लीजिए, या फिर अगर लंच बॉक्स शुरू कर लिया है या मिड में पहुंच चुके हैं तो उसको ठीक से खाइएगा, बिल्कुल प्रॉपर्ली ख़त्म कीजिए। क्योंकि भूख अगर मर जाए ना तो फिर जो है वो खाना खाने का उस तरह मज़ा नहीं आता। अगर आप काम करते हुए अगर लंच को इंजॉय कर रहे हैं साथ साथ तो ये भी जो है बात कुछ अच्छी ही है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि खाना खाते वक्त जो है ना वो खाने को पूरा टाइम देना चाहिए। टॉपिक तो हमारा आज का था, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी जो गुफ्तगू भी है वो है दोपहर के खाने से जुड़ी यादें। कोई ऐसा खाना जिसको जिसकी खुशबू आते ही आपको जो है बचपन याद आ जाता हो, स्कूल का लंच बॉक्स घर से लाया हुआ पराठा, दोस्तों के साथ बांटी गई बिरयानी, या काम पर साथियों के साथ गुजरा हुआ जो है कोई यादगार लंच जिसको खाने के बाद आपको मज़ा भी आया हो और नुक्स भी निकाले हो। क्योंकि दोस्तियों में जो है ना वो जब बैठ के खाना वगैरह खा रहे हो ना तो नुक्स जो है ना वो निकालना मस्ट हो जाता है। और फिर एक दूसरे को तंग करना, तंजो मजाक करना, ये भी साथ चलता रहता है। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लंच बॉक्स को ओपन करते हैं, इसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो आपने मुझ तक पहुँचानी होती है। तो आप हमें बताइएगा कि आपके लंच बॉक्स में कौन सी ऐसी कहानी छुपी है जो आपने मुझ तक पहुँचानी है। आप अपनी उन बातों को, उन प्यारी यादों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल के थ्रू प्रोग्राम में शामिल होकर आप अपनी आवाज़ भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ना सिर्फ मैं आपको सुनूंगी बल्कि आप मुझे सुनेंगे, मैं भी आपको सुनूंगी। आप बता सकते हैं कि आप हमें कहां से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसी के साथ साथ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन अभी ये ना हो कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर दूं तो बात जो है वो बीच की बीच में धरी रह जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपने मनपसंद कलाम सुनते हैं या फिर कोई टॉपिक जो है वो छेड़ के बैठ जाते हैं, कोई टॉपिक लेकर चल पड़ते हैं, डिस्कस करने लग जाते हैं, तो यूँ हो जाता है कि या तो समय ख़त्म हो जाता है, वक्त ख़त्म हो जाता है, या फिर प्रोग्राम में जो है वो कमर्शियल ब्रेक का वक्त आ जाता है। सवाल आइए गुफ्तगू का आगाज करेंगे वापसी पर आकर। लेकिन अभी के लिए इतना बोल देते हैं कि जो लोग हमें घर बैठे सुन रहे हैं, यानी कि हवा तीन बताइएगा कि आप मुझे क्या करते वक्त सुन रहे हैं। मैं भी शायद इस टाइम खाने का टाइम है तो यही सोच रही हूँ कि आज खाने में क्या बनाया जाए या खाने में ऐसा क्या हो जिसको खाने के बाद जो है वो मज़ा आ जाए। तो अगर कोई रेसिपी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, या फिर अपनी कोई राय प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहें, जो चाहें कि रेसिपी आपकी बताई हुई मैं आगे अपने प्यारे लिसनर तक शेयर करूँ तो मैं वो भी करूँगी। अभी एक छोटी सी फरमाइश भी मेरे पास मौजूद थी और कलाम की, लेकिन वही बात आ गई कि कलाम नहीं प्ले हो सकता अभी क्योंकि प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक का समय होगा। और फिर आपका मनपसंद अगर कलाम पूरा ना सुना जाए तो फिर थोड़ी सी जो है ना वो इंसान को थोड़ा सा गिल्ट हो जाता है दिल में कि यार ऐसा हो गया था। तो टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे जो हमारे हमारा जो आगे 1 घंटा है उसमें जो है मैं आपके साथ मज़े की गुफ्तगू को लेकर चलूँ। मिलकर एक खूबसूरती प्लेट को तैयार करेंगे, या फिर यूं कह देते हैं कि मेरी वापसी भी आने तक आप एक खूबसूरती प्लेट को तैयार कर लीजिए। सो
سوال آپ سے میری ملاقات رہے گی اس سے چھوٹی سی کمرشل بریک کے اس پار. ول ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا, ٹیون کر کے رکھیے گا فضل 97.1 FM کو اینڈ ایپ کو. بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کی جانب.

0: results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लांच वाज, आप सुन रहे हैं सलोराज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में हाल हो चुकी थी, कमर्शियल ब्रेक इस फार में रही आपसे मुलाकात। अपनी बातों का सिलसिला जो है वो जारी करते हैं, गुफ्तगू को आगे लेकर बढ़ते हैं, मिलकर ओपन करते हैं इस खूबसूरत लंच बॉक्स को। सो लंच बॉक्स के हवाले से बात की जाए तो बचपन के लंच बॉक्स की अपनी ही दुनिया होती थी। सुबह घर से निकलते वक्त शायद हमें मालूम नहीं होता था कि डब्बे में क्या है, मगर स्कूल पहुँचते ही सबसे पहले उसे खोलने का दिल करता था। कभी अपनी पसंद का खाना मिलता, कभी वो चीज़ जिसे देखकर फौरी जो है ना वो दोस्त के डिब्बे की तरफ नज़र चली जाती थी, और उसी के साथ साथ मज़े

ये बात कि दोस्तों के साथ खाना बांटने का लुत्फ भी जो है ना वो अलग ही था। किसी के पास आलू का पराठा था, किसी के पास सैंडविच होता था, किसी के पास चावल, और कोई ऐसा दोस्त भी होता था जो अपना लंच ख़त्म करके बाकी सबके डिब्बों पर नज़र रखे बैठा होता था।

0: और अक्सर बचपन में ऐसा भी होता था कि जब हम अपनी पसंद का भी लंच लेकर जाते थे ना, तो फिर भी जाकर दोस्त के डिब्बे पे, अगर दोस्त के डिब्बे में कुछ ज़्यादा अच्छा आ गया ना, तो अपना लंच छोड़ दिया और फौरन से उसके लंच को पकड़ लिया. सो पता नहीं ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं, बट मेरे साथ ये चीज़ होती थी. और मज़े की एक और बात भी है कि ग्रुप में एक ऐसा बच्चा भी ज़रूर होता था जो लंच लेकर तो आता था लेकिन खाता नहीं था. अपना तो क्या, किसी का मतलब किसी का तो क्या, अपना भी नहीं खाता था. वो लंच जो है ना, उसके दोस्त ही उस आपस में जो है ना वो बांटते थे एक दूसरे में. सो इस तरह के जो है ना कुछ लोग होते हैं बच्चे, मतलब बचपन में. और मैं भी शायद किसी ना किसी जगह पर आकर इस तरह की थी कि मैं अपना लंच बॉक्स तो बड़ा घर से रो रो के लेकर जाना कि मुझे लंच में ये चाहिए, लेकिन लंच को ले तो जाती थी लेकिन वहाँ पर जाकर मैं खाती नहीं थी, अब के वो दूसरों में बांट देती थी. कभी कभार सामीन ऐसा होता था कि जो खाने हम लेकर आते थे, जो लंच हम लेकर आते थे, वो कभी कभार उन बड़े रेस्टोरेंट्स में भी नहीं, वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता था जिस तरह का घर से बन के जाता था. सो इसमें अगर देखा जाए तो वजह सिर्फ जो है वो मसाले या जायका नहीं होता, इसमें घर का माहौल, अपनों की तवज्जो, ये चीज़ जो है ना इसमें मस्ट होती है. और जो चीज़ दिल से बनाई जाए ना, मतलब रेस्टोरेंट में भी चीज़ें दिल से ही बनती है, लेकिन वो घर का जो एक माहौल है ना, उसका खाना और उसका पीना, वो एक अलग ही होता था. अभी भी कभी कभार शायद ऐसा हो जाता हो कि घर से जो है वो लड़ झगड़ कर जाना कि मुझे ये चीज़ जाके खानी है बर से, तो अगर बर चले जाएं तो बर से उस तरह की मज़े की चीज़ ना मिले, तो फिर उधर बैठ के अम्मी की हाथ की वो दाल जो हम कभी घर में बैठ के खाते भी नहीं थे, वो दाल भी याद आने लग जाती है. शायद आपको अम्मी के हाथ की दाल याद आती हो, अब्बू का इतवार वाला नाश्ता, और नानी के घर की रोटी, या वो खाना जो पूरा खानदान इकट्ठे बैठकर खाते थे. अच्छा, पहले ज़मानों में ये चीज़ बड़ी जो है ना ज़्यादा थी कि सब ने इकट्ठे होके बैठ के नीचे खा, दस्तरखान पे खाना खाना, लेकिन अभी ये चीज़ थोड़ी सी मेरे ख्याल में कम हो गई है. बचपन में ये होता था कि इकट्ठे बैठना, लड़ना झगड़ना, वो प्लेट मेरी है, ये मेरी है, ये ग्लास मेरा है, तुमने मेरे ग्लास में से पानी नहीं पीना. सो इस तरह के झगड़े जो है ना वो हर घर में होते थे, और काफ़ी मज़े का माहौल भी होता था तब. सो उस दस्तरखान पे जो है ना, फिर एक सादा सा सालन भी जो है वो बहुत ख़ास बन जाता था. हैवल गपशप का सिलसिला आपसे जारी करेंगे वापसी पर आकर. मैं शायद कमर्शियल ब्रेक से पहले बता रही थी कि एक छोटी सी फरमाइश थी, प्रोग्राम में इस कलाम को शामिल करते हैं, पर इस कलाम के इस पार मेरी रहेगी आपसे मुलाकात.
1: ये काबा जिसे कहते हैं हम,
0: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलूराज की. सवाल मिलते हैं इस खूबसूरत से कलाम के उस पार.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलोराज की, जहाँ पर हमारा आपका साथ रहता है ठीक 2 बजे तक।

ऑल इसी के साथ साथ लंच बॉक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। खूबसूरत सा प्रोग्राम है लंच बॉक्स, और इसमें हम बात कर रहे थे पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। आजकल जो है बात की जाए तो आजकल दोपहर का खाना अक्सर जो है वो जल्दी में हो जाता है। किसी की मीटिंग शुरू होने वाली होती है, किसी को बच्चों को लेने जाना होता है, पर कोई अपनी दुकान या काम छोड़कर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। पहले जो ये चीज़ होती थी कि सब ने इकट्ठे होकर इकट्ठे बैठकर खाना खाना, जितनी मर्जी मसरूफियात हों, और उस टाइम पे जो है वो मेरे ख्याल में फ़ोन नहीं उस तरह से थे या थे ही नहीं, ये मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ। इसमें जो है वो ये होता था कि सब लोग इकट्ठे बैठ के लंच को करते थे, खाना भी खाते थे, और फिर वो तंजो मजाक भी होता था, मज़े मज़े की बातें होती थी, एक दूसरे को छेड़ना। अब वो चीज़ नहीं रही। अब जो है वो अक्सर हम खाना खाते हुए फ़ोन भी यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत से काम को सर अंजाम दे रहे होते हैं। ऐसे में लंच ब्रेक जो है वो कभी कभी हम इंजॉय कर भी लेते हैं, और वो लोग जो कामकाज की तरफ होते हैं, और कभी कभार यूँ होता है कि घर में हम काम साथ साथ काम कर रहे होते हैं और साथ साथ हम खाना भी खा रहे होते हैं। घर में ये भी होता है और ये भी होता है कि घर में खाना खाते हुए हम फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम फ़ोन को थोड़ी देर साइड पे रख लेना तो हम जो लुकमे का एक लुकमे का जो जायका होगा ना, उसको भी अच्छे से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, अगर हम इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल कर इस तरफ आएँ तो। सामीन बताइएगा कि अगर आप इस वक्त काम पर हैं तो आपकी लंच ब्रेक कैसी गुजरती है यहाँ पे? क्या आप आराम से बैठकर खाना खाते हैं साथियों के साथ, या यूं ही काम करते करते खाना खाना? अमूमन लोग ऐसे होते हैं जो शुक्र करते हैं कि लंच ब्रेक हुई है तो सब चलो काम से थोड़ा छुटकारा मिलेगा, और साथ में खाना खाएंगे और दोस्तों से जो है साथियों से गपशप भी शुरू कर लेंगे। अब बहुत से लोग बीच में ऐसे भी होते हैं जो खाना खाते हुए एक तो फ़ौरन से ख़त्म कर लिया और जाके फ़ौरन से काम करने लगे, और बहुत से बीच में लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, फिर खाने को लंबा लेकर चलते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको खाना, और फिर उसको देर से ख़त्म करना कि भाई थोड़ा काम में और ब्रेक मिल जाएगी। अभी तो ये सीन हो जाता है कि एक टाइम रखा जाता है मखसूस टाइम कि इतने टाइम में जो है आपने, इतने टाइम की आपकी ब्रेक होगी, इतने टाइम में आपने खा के जो है वो फ़ौरन से काम की तरफ वापस आ जाना है। मुझे बताइएगा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आपकी ब्रेक जो है वो कैसी गुजरती है, और खाना आप काम करते हुए ही खाते हैं या फिर ब्रेक जो है उसको इंजॉय भी करते हैं? अपने फ़ोन से आज जो है ना वो नज़र हटा लें, और जहाँ मुमकिन हो खाने के चंद लुकमे सुकून से खाएं, और अगर आप किसी साथी के साथ बैठे हैं तो उनसे पूछ लीजिए कि उनका दिन जो है कैसा जा रहा है। कभी दो मिनट की बात जो है ना वो दिल जीत लेती है, और आपकी छोटी सी मुस्कुराहट जो है ना उससे किसी का पूरा दिन जो है वो अच्छे से गुजर सकता है। हमारा एक घंटा जो है वो तो गुजर गया, और बाकी एक घंटा मेरे आपके दरमियान बाकी रह चुके हैं, मगर कहानियाँ अभी भी बाकी हैं। अभी इस घंटे में जो है मैंने आपको बहुत ही ऐसी दिलचस्प कहानियाँ बतानी है,

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

तो कहीं अच्छी दोस्ताना खाने की मेज़ पर जो है वो शुरू होती हैं। किसी ने अपने डब्बे से एक लुकमा जो है वो पेश किया, किसी ने चाय मांगी और साथ साथ बातों का सिलसिला भी जारी कर लिया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से खाना जो है ना वो थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। सो खाना खाते हुए गपशप भी करनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि खाना खाते हुए उस तरह बोलना नहीं चाहिए।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। एक खूबसूरत सा कलाम शामिल किया था अब्दा परवीन की आवाज में, नूरे इलाही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कलाम पसंद भी आया होगा। और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं लंच बॉक्स की जानिब। हमारे साथ रहिए, हमें अपने मौजूदगी का एहसास भी दिलाइए। और इसी के साथ साथ एक बात पूछते हैं, एक सवाल करते हैं आपसे कि चलें आज अब सच सच बताएं कि क्या आप कोई ऐसी चीज़ आपने इकट्ठी बैठ के खाई हो जिन्हें देखकर बाकी सब हैरान हो जाते हों। मतलब जो है वो मिसाल के तौर पर कोई हरी चटनी खाने के साथ या फिर कोई चिप्स को सालन के साथ खाए और किसी के लिए जो है खाने के बाद चाय फौरन ज़रूरी होती है। मतलब अमूमन ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई चीज़ खाने वाली नहीं भी है साथ तभी उसी के साथ ही खानी है। सो हाँ, मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा अगर आपके साथ सीन है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। हर शख्स की पसंद जो है ना वो अलग होती है, इसीलिए आज किसी के जायके का मजाक नहीं उड़ाएंगे हम। अलबत्त आपकी फरमाइशें सुनेंगे, आपकी वो बातें सुनेंगे जो लंच बॉक्स में आपने हमारे लिए रखी हैं। इसी के साथ साथ मुझे बताइएगा आपका मनपसंद खाना कौन सा है और उस खाने के साथ उसका नाम बताने के साथ साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि आपने उसे पहली बार कैसे आजमाया था, क्या सोच के चखा था कि इसको भी ट्राई कर लिया जाए।

और अगर कोई ऐसा खाना जिसको खाने के बाद आप घर आके बताएं और घर वालों को कहते हैं बस ये हो कि ये खाना नहीं अच्छा है, इसको नहीं खाना चाहिए, इसको इस तरह से नहीं करना, तो इसको इस तरह से नहीं करना. सो अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो मुझे आपने लाजमी बताना है, क्योंकि घर जाहिर सी बात है घर में आओ तो फिर घर वाले तो ये बोलते हैं कि बर्गर का खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभार जो है ना बर्गर का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है. अगर किसी ने आपको बताया हो कि मैंने कल जो है ये ट्राई किया था ये ट्राई किया, तो अगर किसी की तरकीब सुनकर आप उसे आजमाने का फैसला कर लें या फिर आपने आजमाने का फैसला किया है, तो अब बाद में हमें जो है नतीजा भी आपने ज़रूर बताना है. और साथ ही में जो है अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो हाँ आप मुझे बता भी सकते हैं. ये नहीं है मतलब खाना होता तो अच्छा ही है, बुरा तो होता नहीं है, लेकिन टेस्ट में जो है थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है. सो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो लंच बॉक्स के हवाले से है. लंच बॉक्स हमारे प्रोग्राम का नाम है. मिलकर हमने इस लंच बॉक्स को ओपन किया. मजीद पैगाम और मज़े मज़े की फरमाइशें जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल होती रहेंगी. अब तक जो है हमने बचपन के लंच बॉक्स, घर के जायके, काम की मसरूफियात और दोपहर और दोस्तों के साथ खाने की यादों पर बात की है. आप सब ने जो है अपनी कहानियों से इस दोपहर को बहुत खूबसूरत बना दिया है. अगर आपने अभी तक पैगाम नहीं भेजा अपना, तो आखिरी सवाल आपके लिए भी है मेरे पास. आखिरी सवाल आपसे जाते जाते ये है कि अगर आप किसी अजीज के लिए एक लंच बॉक्स तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या रखेंगे और क्यों रखेंगे. चाहे वो आपके बच्चे हो, वालिदैन हो, दोस्त हो या कोई ऐसा शख्स जिसे आप अरसे से मिलना चाहते हैं, हमें अपनी पसंद जरूर बताइएगा. सो इसी के साथ साथ अभी प्रोग्राम में जो है वक्त काफ़ी कम रह चुका है, तो अभी अगले एक कलाम की जानी बढ़ते हैं. फिर इस कलाम के उस पार मेरी रहेगी आपसे मुलाकात. सो स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड ऐप. साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और

0: 1-650-669 Mariah Restaurant, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

मौला जाने लकीर क्या है, फकीर क्या है, मौला जाने। तू मांग उससे, मांग उससे लकीर से न मांग, लकीर बनाने वाले से मांग।

0: ये प्रोग्राम के दौरान एक खूबसूरत ट्रैक शामिल करेंगे, सुनिएगा और सर दुनिया का सुनते रहिए फजा 97.1 FM.
1: This next song is in memory of all those people who've lost their lives and are going

कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात, कमान से निकला तीर और जबान से निकली बात।

वेलकम बैक टू रेडियो फजा 97.1 FM। और शायद यही इंसान की असली सलाह है कि हम दूसरों को बदलने से पहले अपने अंदर झांकना शुरू कर दें, अपने लहजे को देखें, अपने रवैये को देखें, अपने दिल को देखें। और जुम्मा के इस खूबसूरत दोपहर में शायद हमें इससे भी बेहतर मौका ना मिले कि हम कुछ देर के दुनिया के शोर से अलग हों और अपने दिल की आवाज़ सुने। लेकिन वक्त भी अपने सफ़र पर है और जुम्मा के खूबसूरत वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपने अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। तो आइए आज की इन बातों को यहीं छोड़ते हैं, बल्कि अपने साथ लेकर चलते हैं। जो बात दिल को लगी उसे दिल में रखिए, जो बात अच्छी ना लगी उसे जाने दीजिए, और जो बात अपने अंदर तब्दीली का एहसास पैदा करे उसे सिर्फ सुनने तक महदूद रखिए, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। और अब ज़रा गुफ्तगू का अंदाज़ बदलते हैं। अभी तक हम लफ्ज़ों से दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, अब कुछ देर लफ्ज़ों को कलाम बनने देते हैं। जमा किसी दोपहर में एक ऐसा कलाम जिसमें शोर नहीं, सुकून नहीं, जिसमें दिखावा नहीं, कैफी

वेलकम बैक। कभी कभी ना कुछ बातें हम खुद नहीं कह पाते, लेकिन कोई कलाम, कोई शेर, कोई आवाज़ वही बात हमारे दिल की तरफ से कह देती है। और शायद इसीलिए सूफियाना कलाम में एक अजीब सी कशिश होती है, हमें शोर से खामोशी की तरफ ले जाता है और खामोशी से एहसास की तरफ। तो आइए आज आफ्टरनून मिक्स में भी इसी कैफियत को थोड़ा सा बरकरार रखते हैं। अब प्रोग्राम का रंग ज़रा बदल रहा है, मगर हमारी बात वहीं से आगे बढ़ी है, अखलाक से दिल तक, दिल से एहसास तक और एहसास से कलाम तक। अब दोपहर भी अपनी रफ्तार पकड़ रही है और हम भी अब प्रोग्राम को ज़रा हल्का, ज़रा खुशगवार और ज़रा मौसीकी के करीब लेकर चलते हैं। अब ना बहुत भारी गुफ्तगू, ना बहुत संजीदा बातें, बस खूबसूरत कलाम, हल्की फुल्की गुफ्तगू, आपके पैगामात, आपकी पसंद। और इस दोपहर के नाम कुछ ऐसे गीत और कलाम जो सफ़र में भी अच्छे लगे, काम करते हुए भी, अकेले बैठे हुए भी, और शायद चाय के कप के साथ भी। तो जहाँ हैं वहीं रहिएगा, क्योंकि आफ्टरनून मिक्स अब एक नए रंग में आपके साथ है। और अगर आप अभी अभी रेडियो फ़ज़ा 97.1 एफएम के साथ दोबारा जुड़े हैं तो वेलकम बैक, खुश आमदीद, बहुत खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं आफ्टरनून मिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान। आज जुमा की इस खूबसूरत दोपहर में हमने बात की थी अखलाक की, दिल की, रिश्तों की, इंसान के रवैये की। और अब ज़रा इसी गुफ्तगू से निकल कर हम आफ्टरनून के इस खूबसूरत हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ कलाम भी होगा, मौसीकी भी होगी, आपकी फरमाइशें भी होंगी और बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। यानी बात रुकी नहीं है, बस अंदाज़ बदल गया है। और यही तो रेडियो की खूबसूरती है, एक बात दूसरी बात को जन्म देती है, ख्याल दूसरा ख्याल तक ले जाता है, और कभी कभी कलाम पूरी गुफ्तगू का मतलब समझाता है। तो तैयार रहिए, अब आफ्टरनून मिक्स का ये रंग आपके नाम।

अब जरा बात को एक खूबसूरत सम्त में ले चलते हैं। जुमा की दोपहर, हल्का सा बदलता हुआ मौसम और दिल में बसी हुई कुछ पुरानी यादें। आपने कभी महसूस किया कि कुछ आवाज़ें सिर्फ आवाज़ें नहीं होती, कुछ कलाम सुनते ही कोई शख्स याद आ जाता है, कोई शहर याद आ जाता है, घर की कोई शाम, दोस्तों की कोई महफिल या ज़िंदगी का कोई खूबसूरत लम्हा। तो आज आफ्टरनून मिक्स में हम अपनी यादों के साथ चलेंगे। आप हमें बताइएगा कि कौन सा कलाम या गीत आपको किसी खूबसूरत याद में ले जाता है, और फिर हम उसी कैफियत को मौसीकी के ज़रिए आगे बढ़ाएंगे। पहले खूबसूरत कलाम, फिर हल्की सी गुफ्तगू, फिर आपकी फरमाइशें, यानी बात भी चलती रहेगी और मौसीकी भी। तो आवाज़ ज़रा सी बुलंद कीजिए और दिल को ज़रा सा हल्का कीजिए, क्योंकि आफ्टरनून मिक्स का अगला रंग है यादें, एहसास और खूबसूरत आवाज़ें।

वेलकम बैक मेरे दोस्तों। हम बहुत तेज़ी से जी रहे हैं, हमें हर चीज़ फ़ौरन चाहिए, फ़ौरी जवाब, फ़ौरी कामयाबी, फ़ौरी शोहरत, फ़ौरी पैसा, फ़ौरी खुशी, लेकिन कुछ चीज़ें फ़ौरी नहीं मिलती। सुकून वक्त लेते हैं, रिश्ते वक्त बनते हैं, एतमाद वक्त से बनता है, किरदार वक्त से बनता है और इंसान भी वक्त के साथ बनता है। इसलिए अगर आज आप अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मकाम पर खड़े होकर ये महसूस करें कि मैं अभी वहाँ नहीं पहुँचा जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था, तो अपने आप को नाकाम मत समझें। हो सकता है अभी आप रास्ते में हो सकता है आपकी कहानी अभी मुकम्मल ना हुई हो सकता है आज की मुश्किल की ताकत बनने वाली हो, और हो सकता है जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी समझ रहे हैं कुछ साल बाद आप उसी चीज़ को देख करके कि अल्लाह ने उस वक्त मुझे बचाया था और मुझे खबर ही नहीं थी। तो आज आफ्टरनून मिक्स में इसी कैफियत को हम बरकरार रखेंगे, ना अचानक गुफ्तगू खत्म होगी ना माहौल एकदम बदल जाएगा। हम बात से, कलाम से, एहसास से और एहसास से मौसीकी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। पहले ज़रा रूह को छू लेने वाला कलाम, फिर हम वापस आएंगे आप पे, आपकी बातें, आपकी फरमाइशें, आपके पैगाम, और फिर आफ्टरनून मिक्स का वो रंग जिसमें ज़िंदगी भी है, मुस्कुराहट भी है, थोड़ी सी शरारत भी और मौसीकी भी। तो जहाँ कहीं हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो सफ़र जारी रखिए, लेकिन तवज्जो सड़क पर रखिए, काम कर रहे हैं तो काम के साथ ही आवाज़ सुनते रहिए, और अगर घर में है तो शायद चाय का एक कप बन रहा हो तो शायद आप चाय भी पी लें, क्योंकि आप जुम्मा की रूहानी कैफियत को दिल में रखते हुए आप आफ्टरनून मिक्स की एक खूबसूरत महफिल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा कलाम जिसके लफ्ज़ शायद आपके दिल के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दें, सुनिए, महसूस कीजिए, और अगर कोई याद आ जाए तो उसे मुस्कुरा कर याद कीजिए। ये है आफ्टरनून मिक्स फसा 97.1 FM। नूरजहां का ये खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसके साथ

वह कुछ आवाज़ें वाकई अजीब होती हैं, इंसान सुनता कुछ और याद कुछ और करने लगता है, कलाम ख़त्म हो जाता है लेकिन कैफियत कुछ देर और रहती है, और शायद यही मौसीकी और आवाज़ की असल खूबसूरती है। तो चलिए अब इस कैफियत को ज़रा और आगे लेकर चलते हैं। आपके ये सवाल है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी की सिर्फ एक याद दोबारा जीने का मौका मिले तो वो कौन सी याद होगी? बचपन या वालदैन के साथ कोई लम्हा, किसी शहर की कोई शाम, या ज़िंदगी का कोई ऐसा दिन जिसे आप दोबारा गुजारना चाहें आज भी जो दिल के करीब हो? आप हमें बताइए। हमें बताने के लिए मैसेज कीजिए 0115710971। और हम भी आज के इस दोपहर में आपकी यादों के साथ चलेंगे, क्योंकि आफ्टरनून मिक्स सिर्फ मेरी आवाज़ के प्रोग्राम नहीं, आप सबकी कहानियों की महफिल है। महफिल तभी खूबसूरत होती है जब उसमें सिर्फ मेज़बान ना बोले, सामने बैठे लोग भी कुछ कहें, किसी की एक फरमाइश आ जाए, किसी का एक पैगाम आ जाए, कोई कह दे कि आज के प्रोग्राम सुनते हुए मुझे अपने गांव की याद आ गई, कोई कहे ये कलाम सुनते हुए मुझे अपनी वालदा याद आ गई, और कोई शायद खामोशी से सुन रहा हो, कुछ कह ना रहा हो लेकिन अंदर ही अंदर प्रोग्राम के साथ चल रहा हो। तो मेरे खामोश सामीन, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो रेडियो सुनते हुए कम बोलते हैं, तो आज अपने आप से एक बात कीजिए कि खामोश रहना ठीक नहीं लेकिन खुद को तनहा मत समझना। इस वक्त जहाँ कहीं आप हैं, याद रखिए इस फ्रिक्वेंसी की दूसरी तरफ भी बहुत से दिल आपके साथ ये लम्हा गुजार रहे हैं। किसी के हाथ में चाय है, किसी की गाड़ी सड़क पर है, किसी की दुकान पर रेडियो चल रहा है, कोई घर के काम कर रहा है, कोई शायद खिड़की के पास बैठकर सिर्फ आवाज़ें सुन रहा है। यही रेडियो की दुनिया, ना आप हमें देखते हैं ना हम आपको देखते हैं, लेकिन आवाज़ के जरिए एक अजीब सा ताल्लुक बन जाता है। और बात अगर यादों की निकली है तो एक बात मुझे हमेशा बहुत खूबसूरत लगती है कि इंसान जगह नहीं बोलता, इंसान उन जगहों से जुड़ी कैफियतें नहीं बोलता। एक शहर आपके लिए सिर्फ शहर नहीं होता, वहाँ की गली, वहाँ की मस्जिद, वहाँ दुकान, वह चाय का होटल, वो सड़क, वो दोस्त, वो घर, सब मिलकर एक पूरी दुनिया बन जाते हैं। इसलिए जब इंसान बरसों बाद अपने शहर का नाम सुनता है तो सिर्फ एक नाम नहीं सुनता, उसके अंदर पूरी फिल्म चलने लगती है। और शायद इसीलिए परदेश में रहने वालों को अपने वतन की खुशबू ज़्यादा महसूस होती है। एक आवाज़ पाकिस्तान से आती है, एक कलाम बजता है, उर्दू का कोई खूबसूरत शेर सुनाई देता है, और अचानक दिल कहता है कि यार घर की याद आ गई। और घर की बात चली है, अपने वालदैन को मत भूलिएगा, खासतौर पर वो लोग जो नॉटिंघम, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर या बर्तानिया या किसी दूसरे शहर में रहते हैं, उनके वालदैन पाकिस्तान में, आपके पास शायद मसरूफियात बहुत हैं, सुबह काम है, शाम काम है, अपने मामूलात हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन घर कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो सारा दिन सिर्फ आपकी एक कॉल का इंतजार कर रहा हो। उसे आपकी लंबी गुफ्तगू नहीं चाहिए, कभी सिर्फ ये पूछ लेना काफी है कि अम्मी आज क्या पकाया, या अब्बू की तबीयत कैसी है। छोटे सवाल नहीं है, ये वो धागे हैं जो फासले के बावजूद रिश्तों को बांधे रखते हैं। और अब जरा मुस्कुराइए, क्योंकि आफ्टरनून मिक्स में हम हर वक्त संजीदा भी नहीं रह सकते, ज़िंदगी में थोड़ी सी शरारत भी होनी चाहिए। कभी दोस्त को बिला वजह फ़ोन करके कहना हो ये जिंदा हो, और वो आगे से कहे कि हाँ क्यों, कहें बस तस्दीक कर रहा था, ये छोटी छोटी बातें हैं तो ज़िंदगी में रंग भरती हैं। हम बहुत बड़े लम्हों का इंतजार करते रहते हैं, हालांकि ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हे अक्सर बहुत मामूली होते हैं। दोस्तों की बेमकसद गुफ्तगू, चाय पर लंबी बहस, घर में किसी बात पर सबका हंस पड़ना, सफ़र में गलत रास्ते पर निकल जाना और फिर उसी गलत रास्ते की सबसे खूबसूरत याद बन जाना। तो आज की इस खूबसूरत दोपहर में हम अभी इन्हीं छोटी छोटी खुशियों को जमा करते जाएंगे। एक कलाम आएगा, फिर एक बात होगी, फिर कोई याद, फिर कोई फरमाइश, फिर कोई मौसीकी, यानी प्रोग्राम को हम किसी खाने में बंद नहीं करेंगे। ये आफ्टरनून मिक्स है, यहाँ कभी भी दिल की बात हो सकती है, कभी मुस्कुराहट की, कभी कोई खूबसूरत शेर, कभी कोई सूफियाना रंग, और कभी ऐसा गीत कि आप कहेंगे बस यही तो सुनना था। तो आवाज़ वहीं रखें, क्योंकि अभी हमारी महफिल काफी आगे बढ़ चुकी है। और अगला कलाम मैं चाहता हूँ सिर्फ उसे सुने नहीं, महसूस करने, क्योंकि बाज़ कलाम कानों से दिल से सुने जाते हैं। तो लीजिए इसी कैफियत को आगे बढ़ाते हैं, रेडियो फजा 97.1 FM आफ्टरनून मिक्स। सुनिएगा उनके अंदाज़े करम मैशअप, खूबसूरत सा

मेरे बहुत ही प्यारे सामीन, वक्त का पता ही नहीं चला कि हमारी आज की खूबसूरत महफिल अपने अख्ताम की तरफ आ पहुंची। जुम्मा किस बापर के दोपहर में हमने बहुत सी बातें की, कहीं अखलाक की, रिश्तों की, ज़िंदगी की, यादों की, और इसके अलावा दिल की कैफियत की। कभी संजीदा हुए, कभी मुस्कुराए, कभी कलाम सुना और कभी मौसीकी के साथ उन लम्हों को महसूस किया। याद रखिए, मुश्किल वक्त मुस्तकिल नहीं होता, लेकिन इंसान का हौसला उसे गुजरने में मदद देता है। और सबसे बढ़कर अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखिए, क्योंकि जब इंसान के पास सब रास्ते बंद दिखाई दें तब भी अल्लाह की रहमत का रास्ता खुला रहता है। आज की इस महफिल से अगर मेरी कोई बात भी आपके दिल में रह गई, अगर कोई जुमला आपको अपने किसी रिश्ते की कदर करने पर मजबूर करे, अगर कोई कलाम आपको किसी खूबसूरत याद तक ले गया हो, या अगर कोई चंद लम्हे के लिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो, तो समझ लीजिएगा हमारी महफिल कामयाब रही। आप सुन रहे थे रेडियो फजा 97.1 FM। और हमारी आज के इस जुम्मे की महफिल का आखिरी पैगाम बस इतना ही है। दिल साफ रखिए, जबान नरम रखिए, रिश्तों की कदर कीजिए और अल्लाह को कभी मत भूलिए। अगले प्रोग्राम तक अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मोहब्बतें बांटते रहिए। मैं था आपका मेज़बान, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आवाज़ जो दिलों को जोड़ती है, रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और आप सबको एक बार फिर जुम्मा मुबारक।

0: दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: You are safe. We are playing. Fazan 97.1 FM.
5: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

ऑल राइट जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके हैं लड़के वापिस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। मुझे कहते हैं जनाब उस्मान खान और आप सुन रहे हैं 97.1 FM नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, शाम के इन खूबसूरत से वक्त में आप जहां कहीं भी मौजूद हैं, जरा एक लम्हे के लिए रुककर अपने इर्द गिर्द देखिए। गाड़ियों की कितारें, सड़क पर चलते हुए लोग, दुकानों की रोशनियां, घर वापस जाते हुए लटके हुए या फिर मुस्कुराते हुए चेहरे, हर शख्स कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश में तो है ना। लेकिन अजीब सा एक सवाल है जो मैं चाहूंगा कि आज मैं आपसे पूछूं। अजीब तो नहीं, खैर सवाल है, और सवाल जैसा भी हो वो सवाल ही होता है और सुनने वाले पर फर्ज हो जाता है उसका जवाब देना। समझ बताइएगा, हम सब मंजिल तक पहुंचने की इतनी जल्दी में क्यों हैं कि रास्ते को देखना ही भूल जाते हैं। कभी गौर किया आपने कि जब भी कभी आप घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस से निकलते हैं घर के लिए, मैं सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस की बात कर रहा हूँ, किसी और जगह की बात नहीं कर रहा, तो जब कभी आप निकलते हैं आपको मंजिल पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि हमें रास्ते को देखना ही याद नहीं रहता। कोशिश करते हैं कि हम रास्ते को देख सकें, रास्ते के में क्या क्या मनाजिर हैं, क्या क्या हो रहा है, कैसे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ मंजिल पर पहुँचना होता है। बोल जनाब, मैं हूं आपका दोस्त आरजे उस्मान खान और आप सुन रहे रेडियो 97.1 FM डैब। सो आज का ड्राइव टाइम थोड़ा सा होगा मुख्तलिफ, ना कोई लंबी नसीहतें, ना ही वही पुराने सवाल। आज बात होगी उन छोटी छोटी चीजों की जिन्हें हम रोज देखते तो हैं लेकिन कभी उनके बारे में सोचते नहीं। कुछ अजीब सी मालूमात, कुछ हकीकी जिंदगी के वाकयात, बस कुछ हंसी मजाक, और दरमियान में आपके पसंदीदा ट्रैक्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। तो सफर जहां भी जा रहा है, रेडियो फजा आपके साथ लेकर चल रहा है। आपके पसंदीदा ट्रैक्स को प्रोग्राम में शामिल करना मेरा सबसे पहला काम होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम में जब भी आपके लिए कोई गाना शामिल करूं वो आपकी प्लेलिस्ट का फेवरेट ट्रैक होना चाहिए। कुछ ओल्डी गोल्डी से गाने भी चलेंगे, कुछ नए गाने भी चलेंगे, और कोशिश करेंगे साथ में कुछ रैप शैप भी हो जाए। आई एम नॉट अ गुड सिंगर लेकिन चॉइस अच्छी है, ये बात आपको कुछ वक्त के बाद मानने पर मजबूर कर दूंगा। खैर जनाब, कभी गौर किया है कि कभी किया गौर, हम रोजाना दरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं, लेकिन कभी सोचा कि दरवाजे का हैंडल अमूमन एक खास ऊंचाई पर ही क्यों होता है? गेस, दैट्स हम दुकान पर जाते हैं, कभी गौर किया कि दुकान में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें अक्सर आंखों की सतह के करीब क्यों रखी जाती हैं? यानी कि जब भी आप किसी दुकान में जाते हैं और आपकी जो भी चीजें दुकान में मौजूद होती हैं वो आपकी आंखों के बराबर में होती है, बहुत ऊंचे नहीं, बहुत नीचे नहीं। और फिर कभी सोचे कि हम जब कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और कभी सोचा कि मेन्यू में कुछ चीजों की कीमत के साथ सिर्फ या खास जैसे अल्फाज क्यों लिखे होते हैं? मानन, दरअसल हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी चीजें इत्तेफाक नहीं होती, किसी चीज की जगह रंग, आवाज, रोशनी, हत्ता के अल्फाज भी हमारी तवज्जो मुतासिर करते हैं। और यही चीजें आपकी दुनिया में, आज की दुनिया में कारोबार से लेकर इश्तहारात तक इस्तेमाल होती हैं। सो अगर आप अगली बार किसी भी दुकान में जाएं, जरा इर्द गिर्द गौर कीजिएगा, मुमकिन है कि आपको वो चीजें नजर आ जाएं जो पहले कभी नजर ही नहीं आई आपको। ओके, सिटी बजाना बुरी बात होती है, सिटी बिल्कुल भी नहीं बजाते, लेकिन वो क्या है ना कि ये तो फिर साथ साथ चलता है। वो मैं कहा करता हूँ अक्सर आपसे कि ऐसा तो फिर हो जाता है अक्सर ऐसे कामों में, जब इस तरह के काम करेंगे तो ये तो होगा। कोई बात नहीं जनाब, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और खूबसूरत सी आवाज, उम्मीद है कि ये आवाज आपके दिल को जरूर छुएगी। हाय हाय हाय हाय हाय, कैसा नशा, कैसा नशा भाई, कैसा नशा, मुझे भी पता चले कैसा नशा। ओ चल जा, हो पई, ओ चल गया चल गया चल गया। सो लीजिए जगह इस खूबसूरत सी आवाज को, इसको इस बार होगी आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM एंड डैब, प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM,
6: आई लव इट।

ऑलराइट वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके हैं आप ही अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल और बहुत बहुत खुशामदीद उन तमाम तर प्यारे प्यारे समाज को जिन्होंने अभी फजा 97.1 एफएम को ट्यून टेस्ट चूज किया है। ओवल जनाब शाम के इस खूबसूरत से वक्त में आप जहां कहीं भी मौजूद हैं एक मरतबा मेरी आवाज की तरफ ध्यान दीजिए भाई जी। बोल अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उम्मीद है कि सफर महफूज है। अगर आप दफ्तर से वापस आ रहे हैं तो शायद आज के काम का आखिरी मरहला चल रहा होगा। बोल अगर आप किसी दुकान पर बैठे हैं तो मुमकिन है कि कस्टमर्स की आमदोरफ्त जारी और सारी होगी, पैसे वैसे छाप रहे होंगे। और अगर ये भी नहीं तो यकीनन आप इस वक्त घर पर मौजूद होंगे, शायद चाय का एक कप आपके हाथ में होगा और आराम से रेडियो सुन रहे होंगे। ओवल जो भी कर रहे हैं जहां भी हैं बस इतना याद रखिएगा कि ये वक्त जो है ये आपका और हमारा है, क्योंकि आपके साथ है रेडियो 97.1 एफएम डैब आल्सो मी आरजे उस्मान खान। ओवल जना प्रोग्राम आज का थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और बल्कि है भी ओवल, क्योंकि आज हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, हम बात करेंगे उन चीजों की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कुछ ऐसे ही मालूमात भी आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा, जिसे सुनकर आप ये तो एक बार सोचेंगे हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था। वल कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद आपके पास हो लेकिन आपने कभी किसी से पूछे ना हो, कुछ ऐसी बातें जिन पर आप हंसेंगे, कुछ ऐसी कहानियां जो शायद आपको अपने किसी दोस्त, अपने घर या अपनी जिंदगी की याद दिला दें। और फिर सबसे बढ़कर आपकी आवाज, आपके पैगाम और आपके मैसेजेस। अच्छा वैसे पैगाम और मैसेजेस सेम चीज होती है लेकिन खैर कोई बात नहीं। ओवल जनाब आपके पैगाम हो आज जरा रेडियो के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मुमकिन है जो मैं नेक्स्ट ट्रैक शामिल करने वाला हूँ वो नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम हो, ये भी मुमकिन है कि अगला सवाल आपके नाम हो। खैर ये भी मुमकिन है कि आज की कोई एक बात आपको पूरे दिन में सबसे ज्यादा याद रह जाए। सुबह ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, हवा को अंदर आने दीजिएगा, वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा और कहिए चलो भाई शुरू करते हैं। जी हाँ जनाब, ये है ड्राइव टाइम आपके अपने मेजबान उस्मान खान के साथ। शामिल करें एक और खूबसूरत सी आवाज, इस आवाज के उस पार चलेंगे एक छोटी सी प्यारी सी कमर्शियल ब्रेक की जाने पर, जब कमर्शियल ब्रेक से वापस लौट कर आएंगे फिर मजीद इसी खूबसूरत से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। मुझे कहते हैं उस्मान खान, आपको क्या कहते हैं आपने मुझे बताना है। बताने का तरीका क्या, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लेकिन फिर से बताऊंगा उन लोगों को जिन लोगों ने अभी फजाने 7.1 एफएम को ट्यून किया। मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कीजिए, द नंबर इज 0115 7100971 0115 7100971। इंतजार करूंगा आपके पैगाम का, मर्जी हो तो कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है इतना कॉन्फिडेंस तो है कि रेडियो पे लाखों लोग सुन रहे हैं। सो चलिए करते हैं इंतजार, तब तक सुनते हैं ये खूबसूरत सी आवाज, मिलते हैं इसके उस पार, रहिएगा मेरे साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान।

वंस अगेन वेलकम बैक जनाब, खुश आमदे दोस्तों। चलिए ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले तमाम दर समाजों का बेहद शुक्रिया जो कमर्शियल ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वेलकम कहेंगे आपको, जी आनंद सत बिस्मिल्ला भी ले लीजिए, ले चुके। चलिए ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक जरा सा काम करते हैं। वजला में आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप कैसे हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो तकरीबन हर शख्स एक जैसा ही देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम गुड, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं पूछना चाहता हूँ कि वाकई आपका दिन कैसा गुजरा? आज सुबह जब आंख खुली तो दिल खुश था, या फिर अलार्म बजा तो दिल ने कहा कि यार अभी तो सोया था, या फिर दफ्तर पहुंचते ही काम का पहाड़ सामने आ गया? क्या आज कोई ऐसा वाक्या हुआ जिसने आपको हंसा दिया? क्या किसी ने आपकी तारीफ की? क्या किसी ने आपका मूड खराब किया? क्या आज किसी पुराने दोस्त का फोन आया? या आज का दिन बस मामूल के मुताबिक गुजरा? सुबह उठे, काम किया, खाना खाया, लोगों से मिले, फिर वापस घर और अब रेडियो। असल में हमारी जिंदगी का ना बड़ा हिस्सा इन्हीं मामूल के दिनों पर मुश्तमिल होता है, और हम कोशिश करके भी इनको चेंज नहीं कर पा रहे। हम बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहते हैं, हम सोचते हैं कि जब छुट्टी होगी तो मजा आएगा, जब पैसे ज्यादा होंगे तब मजा आएगा, जब कभी किसी सफर पर जाएंगे तब मजा आएगा, या जब नया घर होगा तब खुशी होगी। लेकिन कभी कभी ना ये हमें याद ही नहीं रहता कि जिंदगी का ज्यादा हिस्सा आज में गुजर रहा है। आज की चाय भी तो जिंदगी है, आज दोस्तों से होने वाली 5 मिनट की बात भी तो जिंदगी है, आज गाड़ी चलाते हुए सुना जाने वाला पसंदीदा ट्रैक भी तो जिंदगी है, आज घर पहुंचकर बच्चे का दरवाजे पर इंतजार करना भी तो जिंदगी है, और कभी कभी आज का सिर्फ सुकून से गुजर जाना बहुत बड़ी नेमत लगता है। आज कोशिश करें, सोचें जरा अपने दिन को, रिवाइंड करें और बताएं कि आज अपने दिन को एक नंबर देना हो तो वो 10 में से कौन सा होगा, 1, 5, 8 या पूरे 10? पर अगर आपको लगता है कि नंबर कम है तो कोई बात नहीं, दिन खत्म होने में अभी वक्त बाकी है। मुमकिन है कि ड्राइव टाइम आपके आज के दिन को चंद नंबर मजीद दे दे, हो सकता है ना? जरा सोचिएगा और मुझे बताइएगा काउंट करके कि कितने नंबर देंगे आज के दिन को आप। और इसके लिए करना कुछ इतना है कि बस जो नंबर आपको बताया गया इस नंबर पे मुझे लाइव कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर आपको नंबर नहीं पता तो लीजिए, सुन लीजिए, द नंबर इज 0115710091। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसी आदत की तरफ जो शायद हम सब में थोड़ी थोड़ी मौजूद है, और वो आदत होती है चीजें जमा करने की आदत। जरा सोचिए और बताइए कि हो सकता है ना कि किसी के पास कुछ पुराने सिक्के पड़े हों, किसी के पास कुछ पुरानी टिकटें पड़ी हों, किसी के पास पुराने मोबाइल फोन हों, किसी के पास पुराने कपड़े इतने के अलमारी कहती है बस कर भाई, किसी के पास जूते, किसी के पास किताबें, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर में कोई खाली डिब्बा देखे तो फौरन कहते हैं इसे फेंकना नहीं, काम आएगा। यकीनन आप इनमें से कोई एक काम तो करते होंगे। अगर आपको भी मेरी तरह डिब्बे जमा करने का शौक है तो फिर वो डिब्बा 5 साल तक वहीं पड़ा रह जाता है मेरी तरह। कभी गौर किया कि हम अक्सर ऐसी चीजें भी संभाल के रखते हैं इस्तेमाल करने वाली, जिनका हमें हकीकत में कोई इस्तेमाल नजर ही नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि चीजों के साथ यादें जुड़ी होती हैं। कोई एक पुरानी घड़ी शायद किसी खास शख्स ने दी हो, शख्स एक खास शख्स ने दी हो, कोई एक पुराना खत शायद किसी ऐसे दोस्त का जो अब जिंदगी में मौजूद ही नहीं, कोई एक पुरानी तस्वीर शायद ऐसे वक्त की हो जब हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं था लेकिन हम खुश थे यार। इसीलिए बात चीजें कीमत में मामूली तो होती हैं लेकिन हमारे लिए कीमती बहुत होती हैं। एक पुरानी चीज हाथ में आती है और अचानक दिमाग हमें कई साल पीछे ले जाता है। क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है?
कोई ऐसी चीज जिसकी शायद मार्केट में कोई वैल्यू ना हो, लेकिन आप उसे फेंक नहीं सकते। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज मौजूद है तो मुझे जरूर बताइएगा। खैर चलिए, इसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नई नस्ल ने शायद देखी ही नहीं, यू नो, हमारी आपकी जनरेशन जो है, कुछ पुरानी चीजें। याद करें, कभी जमाने में मोबाइल फोन नहीं था, लोग खत लिखते थे। खत, लेटर। आज हम किसी को अगर पैगाम भेजते हैं और अगर 5 मिनट में जवाब ना आए तो सोचना शुरू कर देते हैं, नाराज है क्या? और आपको पता है कि पहले जब खत भेजा जाता था, फिर कई दिन इंतजार करना पड़ता था, फिर कहीं जाकर जवाब आता था, और जवाब खोलने का भी एक अपना ही मजा होता था। फिर वो दौर गुजरा खत का, तो फिर कैसेटें आना शुरू हो गई, कैसेटों का जमाना आया, फिर हम अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए कैसेटें खरीदा करते थे, और अगर गाना बहुत पसंद आ जाए तो कैसेट बार बार चलती थी, और अगर टेप ही खराब हो जाए तो अरे भाई जल्दी से पेंसिल निकालो और टेप को हाथ से घुमाओ। उफ, आज के बच्चे शायद कहीं भूल चुके हैं या उनको पता ही नहीं है इन चीजों का। और मेरे ख्याल में अगर कोई बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो वो भी यही कहेंगे, ये क्या हो रहा है बच्चे, जो हो रहा है आपकी बात, आपके जहन से बहुत दूर की बात है। खैर जी, फिर आपको पता है CD आई, फिर MP3 आई, फिर मोबाइल आया, और आज एक पूरा गाना नहीं बल्कि पूरी दुनिया हमारी जेब में है। लेकिन अजीब बात है कि सहूलत बढ़ती गई और इंतजार कम होता गया, और शायद इसी वजह से बाज पुरानी चीजों की याद आज भी बड़ी खूबसूरत सी लगती है। भले आपके ख्याल में वो कौन सी चीज है पुरानी जो दोबारा वापस आनी चाहिए, कैसेट, लेटर, पुराना रेडियो या कुछ और? हाय, अगर पुरानी बातें चल ही पड़ी हैं तो क्यों ना कोई एक पुराना सा गाना आपको सुनाया जाए। और फिर अगर पुराना सा गाना होगा तो हमारे अंकल और आंटीज जो हमें सुन रहे हैं उनको भी तो पसंद आएगा ना। लेकिन शर्त वही है कि अगर हमारे अंकल और आंटीज हमारे साथ साथ हैं तो उन्हें अपने होने का एहसास भी मुझे दिलाना है, मुझे बताना है कि आप हमारे साथ हैं, नॉटिंघम से ताल्लुक है इसके गिर्दो निर्द। सो वेल, जब तक आप मुझे बताते हैं तब तक आपको सुनाएंगे अपने कोरोना आंटीज को, खास तौर पर उन तमाम धर लोगों को जिनके मुतालिक पुरानी बातें कर रहे थे। हाय, अच्छा वेल, 90s के ट्रैक्स का एक अपना ही मजा है, और मैं अगर एक एक को प्ले करने बैठूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा और फिर चॉइस करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा आपको सुनाऊं। सो आइए एक मैशअप को लेकर चलते हैं। बड़े खूबसूरत से रोमांटिक सा मैशअप है जी, आप तमाम तरुण समाजों के लिए जिनको पुराने ट्रैक्स पसंद हैं। इसके बाद होगी आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू आर लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड आल्सो डैब प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7

अंदर देख। पूछा ना ऐसा, वो गाड़ी से उतरा और पूछा कि बाबा जी आप यहाँ रोज बैठते हैं? उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि हाँ बेटा। फिर उसने पूछा कि किसी का इंतजार है? बाबा जी ने कहा नहीं। वो हैरान हुआ और फिर रोज यहाँ क्यों आते उसने पूछा। तो बाबा जी ने कहा कि लोगों को आते जाते देखता हूँ, हर शख्स कहीं ना कहीं पहुँचने की जल्दी में है, मैं अब जल्दी में नहीं हूँ। ये जुमला शायद बहुत सादा है लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। हम सब किसी न किसी चीज़ की जल्दी में ही हैं। जल्दी घर पहुंचने की हो सकती है, जल्दी काम ख़त्म करने की हो सकती है, जल्दी पैसे कमाने की हो सकती है, कामयाबी जल्दी मिल जाए, अगला स्टेप लेने की जल्दी होती है। और कभी कभी हम इस कदर जल्दी में होते हैं कि मौजूदा लम्हा गुजर जाता है और हमें पता तक नहीं चलता। ज़िंदगी शायद सिर्फ मंजिल का नाम नहीं है दोस्तों, रास्ता भी ज़िंदगी है। इसलिए अगर आज ट्रैफिक में फंसे हैं तो सिर्फ ये ना सोचिए कि कब निकलूंगा। बल्कि रेडियो 97.1 FM के साथ है तो इसको सुनिए, म्यूजिक को सुनिए, किसी अपने को फोन करें और इस वक्त को भी वक्त ही समझें। वजन आप देखते देखते पता नहीं चला कि वक्त कितना गुजर चुका है। आप सुन रहे फजा 97.1 FM एंड ऐप अपने मेजबान उस्मान खान के साथ। और अगर आप आज हमारे साथ पहली बार शामिल हुए हैं तो खुश आमदेद कहेंगे आपको, और अगर आप पहले से हमारे साथ हैं तो दिल से शुक्रिया। आप जानते हैं ना कि रेडियो की असल ताकत यही है कि एक शख्स माइक के सामने बैठा होता है और दूसरी तरफ ना जाने कितने लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ होते हुए उसे सुन रहे होते हैं। जैसे कि आप गाड़ी में सुन रहे हैं, घर में सुन रहे हैं, दुकान पर सुन रहे हैं, दफ्तर में सुन रहे हैं, शायद आप में से कोई ऐसा भी हो जो आज पहली मर्तबा मेरी आवाज सुन रहा हो। सो जो भी नए सामीन अभी शामिल हुए हैं, बताते चले मुझे कहते हैं उस्मान खान और आप सुन रहे हैं 97.1 FM एंड ऐप। वाली से पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताते चलूं कि कमर्शियल ब्रेक और आपके दरमियान, बल्कि मेरे और आपके दरमियान कमर्शियल ब्रेक हायल होने वाली है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा वक्त बाकी है। सो अब ये वक्त हमें बता रहा है कि या तो एक अदद प्यारा सा ट्रैक आपको सुना दिया जाए या फिर बातों को इसी तरह जारी और सारी रखा जाए। फिर आखिरी फाइनली फैसला ये हुआ कि खूबसूरत सा म्यूजिक आपको सुनाया जाए। अगर तो आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो थोड़ा सा शीशा नीचे कीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए।

0: ऑलराइट वंस अगेन वेलकम बैक। आज की लड़की भाभी से एक छोटी सी प्यारी सी चुनी मुनिस मुझको देखिए उस पार अपने गाने को किया मुकम्मल। इस गाने को सुनते सुनते मजा ही इतना आ रहा था कि मेरे दिल ही नहीं किया कि मैं इस गाने को आधा अधूरा छोड़ दूं। कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले हमने इस गाने को शामिल किया, बचा खोचा हमने कमर्शियल ब्रेक के उस पार शामिल कर दिया। मोबाइल जनाब ने आने वाले मौजूद मेहमानों को खुश आमदेद कहेंगे अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है ड्राइव टाइम। बेहद शुक्रिया आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम एंड डैब के लाइव स्टूडियो से अपने मेजबान उस्मान खान की आवाज। आधा प्रोग्राम गुजर चुका है और जो बाकी रह गया उसको मजीद खूबसूरत बनाएंगे। आपके और अपने दिमाग को थोड़े से काम में लगाएंगे। जरा सोचिएगा, आपने कभी महसूस किया कि जब आप कोई नया लफ्ज सीखते हैं, यू नो एक वर्ड सीखते हैं, और अचानक वो लफ्ज आपको हर जगह नजर आने लगता है। मसलन आपने कोई नई गाड़ी देखी, लेट्स सपोज अगर आपने कोई नई गाड़ी अगर आपने कोई देखी है और पहले कभी आपने उसे खास तौर पर नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सड़क पर हर दूसरी गाड़ी वही है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हालांकि गाड़ियां अचानक नहीं बढ़ती, आपके दिमाग ने उस चीज को ज्यादा नुमाया करना शुरू कर दिया है। इसी तरह जब हम किसी मौजू के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमें उससे मुतलिक चीजें ज्यादा नजर आने लगती हैं। इसी वजह से कभी आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और अगले ही दिन किसी दोस्त से उसी मौजू पर बात हो जाती है, हमें लगता है यार ये कैसा इतफाक हुआ, लेकिन हमारा दिमाग पहले ही उस चीज पर ज्यादा तवज्जो दे रहा होता है। इंसानी दिमाग वाकई बड़ी अजीब सी चीज है। हम जो देखते हैं हमेशा वही नहीं होता, लेकिन जो हमारे सामने सबसे ज्यादा मौजूद हो कभी कभी हम वही ज्यादा देखते हैं जिस पर हमारी तवज्जो पहले से लगी होती है लेकिन हमें पता नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि जिंदगी में अपनी तवज्जो का खास तौर पर ख्याल रखना भी जरूरी है। अगर हर वक्त बुरी चीजें देखेंगे, बुरी खबरें सुनेंगे तो दुनिया बुरी लगने लगेगी। अगर हर वक्त दूसरों की कामयाबी देखेंगे तो अपनी जिंदगी कम लगने लगेगी, और अगर हर वक्त अपनी कमियों पर तवज्जो देंगे तो अपनी मौजूदा नेमतों पर कभी भी आपकी नजर नहीं जाएगी। तो मेरा ख्याल है मेरे सामने कभी कभी दिमाग को भी कहिए भाई जरा इधर भी देख। और जनाब अब थोड़ी सी संजीदगी खत्म करते हैं, बाहर निकलते हैं इन बातों से। मुझे लगता है कि प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन ज्यादा और एंटरटेनमेंट कम हो रही है। सो आइए बात करते हैं अपनी एशियन कम्युनिटी के बारे में। वो साउथ एशियन कम्युनिटी जो इस वक्त मुझे सुन रही है, जो मेरे साथ साथ है, हमारी एशियन जितनी भी फैमिलीज हैं ना इस वक्त जो मुझे सुन रही हैं, साउथ एशियन फैमिलीज सबके घरों में ना एक चीज बड़ी मशहूर कॉमन होगी, और जानते हैं वो क्या? वो है जनाब मेहमानों के आने से पहले की सफाई। उफ, और ये सफाई कोई आम सफाई नहीं होती मेरे भाई। अगर एक आम दिनों में अगर घर थोड़ा सा बिखरा होना तो चलो कोई बात नहीं है, खैर है, लेकिन जैसे ही फोन आए कि बस 10 मिनट में पहुंच रहे, मुझे तो लगता है घर में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। सोफे के कुशन सीधे, मेज साफ, पर्दे ठीक, जो चीज नजर नहीं आनी चाहिए वो कमरे में, और जो चीज रखनी थी वो अलमारी में। और फिर घर का एक बंदा ऐसा भी होगा जो कहेगा ये चीजें यहाँ क्यों रखी हैं? मेहमान आ रहे हैं भाई, खुदा का खौफ करें, मेहमान चीजें देखने आ रहे हैं, घर का मुआयना करने। और उसके बाद फिर जब चाय का मरखला चलता है, चाय कितनी बनाऊं, किचन से आवाज आती है ना, चाय कितनी बनाऊं, पता नहीं देखो कितने लोग हैं, बस थोड़ी ज्यादा बना लो। और फिर हमेशा इतनी चाय बन जाती है कि आखिरी कप का कोई वारिस ही नहीं होता, फिर वही चाय दोबारा गर्म होती है, फिर दोबारा, और आखिर में रहने दो नहीं बना लेते हैं। ये सारी चीजें जो ना घरों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, और शायद यही खुशियां बाद में सबसे ज्यादा याद आती हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नौजवान था, हर वक्त अपने मुस्तकबिल की फिक्र में रहता था। वो सोचता था कि जब मेरी नौकरी अच्छी हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा। फिर नौकरी मिल गई और उसने सोचा कि जब मेरी आमदनी बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो सुकून मिलेगा। आमदनी भी बढ़ गई, फिर सोचा अब अपना घर होना चाहिए, घर भी हो गया, फिर गाड़ी, फिर मजीद काम, फिर मजीद जिम्मेदारियां। फिर एक दिन वो अपने पुराने मोहल्ले में गया, वहाँ एक छोटी सी दुकान के बाहर चंद लोग बैठे थे। वहाँ उसे अपना पुराना दोस्त नजर आया, दोनों ने एक दूसरे को देखा और गले मिले। बातों बातों में दोस्त ने पूछा कि याद है हम यहाँ शाम को बैठा करते थे। वो मुस्कुराया, हाँ। दोस्त ने कहा तब हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन हम रोज हंसते थे। लड़का खामोश हो गया क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वो जिंदगी भर सुकून तलाश करता रहा और शायद सुकून उसे बहुत पहले मिल चुका था, बस उस वक्त उसे मालूम नहीं था कि वो सुकून है। सुसामीन, कभी कभी हम जिंदगी में आगे बढ़ने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमने जो हासिल किया है उसे महसूस भी करना है। फ्यूचर के लिए मेहनत ज़रूर करें, यह नहीं कहता कि आप अपने फ्यूचर को मुस्तकबिल को बेहतर ना बनाएं, ज़रूर मेहनत करें लेकिन मौजूदा लम्हे को मुकम्मल तौर पर कुर्बान कभी ना कीजिएगा क्योंकि फ्यूचर जब आता है तो वो भी आज बन जाता है। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे और मेरी इस बात को फॉलो भी करेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक और खूबसूरत सी आवाज़। उम्मीद है कि ये आवाज़ आपको जरूर अच्छी लगने वाली है। शुकी आवाज, ट्रैक सफर, हल्का सा मैशअप। उम्मीद है कि आपकी प्लेलिस्ट में आज ये गाना भी ऐड होने वाला है। सेंटी लोगों के लिए सेंटी, रोमांटिक लोगों के लिए रोमांटिक। बाकी सुनकर मुझे बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा।
1: ओ सनम खुल जिगर तुम कहो क्या ही खबर कैसे कटी ये रातें हैं, कहते हैं सब मगर

अब तो अमजद जुदाई के उस मोड़ तक दर्द की धुंध है और कुछ भी नहीं, जाने मन अब वो दिल लौटने के नहीं। छोड़िए अब वो किस्सा पुराना हुआ, वो जो उलझा था वैसी हवा से कभी, उस दिए को मुझे तो जमाना हो।

जो है वो आज ही है। सोचिए कौन है जिससे आप माफी मांगना तो चाहते हैं लेकिन हमेशा टाल देते हैं। उठाइए फोन कीजिए उसे और मांग लीजिए माफी। किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं लेकिन दिल नहीं मानता, कर लीजिए। उम्मीद है कि मेरी इस बात से आपके जहन में कोई ना कोई तो आया होगा। चलिए अभी ना कीजिए, प्रोग्राम खत्म होने के बाद कर लीजिएगा, तब तक आपको मजीद सोचने का मौका मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अगर सोचने पर ज्यादा वक्त लगाएंगे तो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ज्यादा सोचते नहीं है, जो जहन में आया बस कर दीजिए। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। मेरी एक बुरी आदत थी कि मैं हमेशा ये कहा करता था कि जो होगा देखी जाएगी, वक्त आएगा तो देखी जाएगी। और न सिर्फ मेरी बल्कि बहुत से लोगों की ये बुरी आदत होती है। ये बुरी क्यों है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों की मेरी तरह ये बुरी आदत ज़रूर है कि वक्त आएगा तो देखा जाएगा, देख लेंगे जब वक्त आएगा। यकीन करें कि मैंने ये ज़ाती तजुर्बा किया है कि जब वक्त आता है फिर देखने नहीं होता, फिर बंदा पछताता है कि काश उस वक्त ये चीज़ कर लेता। जी हाँ, जब वक्त आ जाए तो फिर देखने नहीं होता, इसलिए कल भी मत छोड़िएगा, वक्त आने पर मत छोड़िएगा। जो चीजें आज आपके पास है उनको अपना लीजिए, कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें कर लीजिए। खैर उम्मीद है कि इतना भाषण आज के लिए काफी है। अब जरा खेलते हैं जनाब। मैं आपके सामने तीन चीजों का नाम लूंगा, आपने फौरन बताना है कि इनमें से आप किसके बगैर एक हफ्ता गुजार सकते हैं। सवाल फिर से सुन लीजिए, मैं आपको तीन चीजों के नाम बताऊंगा और आपने मुझे बताना है कि इन तीनों में से किस चीज के बगैर आप एक हफ्ता गुजार सकते हैं, यानी कि एक वीक के लिए आपको वो चीज छोड़नी होगी। सफर्सिंग मोबाइल फोन, सेकंड चाय कॉफी एंड थर्ड इंटरनेट। आसान नहीं है ना जवाब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए और बताइए कि गाड़ी, टीवी, सोशल मीडिया, इन तीनों में से कोई एक चीज छोड़नी हो तो। नहीं समझ आई, चले आगे बढ़ते हैं। सोचिए, चाय तो हो गई थी, चॉकलेट की जानिब चलते हैं। चले, बहुत से लोगों को चॉकलेट नहीं भी पसंद होगी लेकिन ज्यादातर लोगों को चॉकलेट पसंद होती है। बहुत ज्यादा नहीं भी खाते तो एटलीस्ट एक आध बाइट तो ले ही लेते हैं ना। तो सोचिए, चॉकलेट, बिरयानी या फिर पिज्जा। अभी भी नहीं, चलिए आखिर पे आते हैं। पैसा, नींद, सुकून। अब जरा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि पैसा जरूरी है, नींद जरूरी है और सुकून वो तो सब कुछ चाहिए ना भाई। लेकिन असल सवाल यह है कि हम सुकून खरीदने के लिए कितनी चीजें खरीदते रहते हैं और फिर सुकून भी नहीं मिलता। शायद सुकून चीज नहीं है, ये तो एक कैफियत होती है ना। सोचना पड़ेगा, सोचिएगा और बताइएगा। बताने का तरीकेकार वही पुराना, व्हाट्सएप का नंबर 01157100971। चाहे तो कीजिए कॉल, नहीं दिल मानता तो कर दीजिए मैसेज। वेल जनाब, शाम तो थोड़ी सी गहरी होती जा रही है, दफातर खाली होने लगे हैं, सड़कों पर घर जाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। कुछ लोग आज के काम से मुतमईन तो होंगे, कुछ सोच रहे होंगे यार आज तो कुछ भी मुकम्मल नहीं हुआ। बट एक बात याद रखिएगा, हर दिन का कामयाब होना भी जरूरी नहीं होता। कुछ दिन सिर्फ गुजारने के लिए होते हैं, कुछ दिन सीखने के लिए, कुछ दिन आराम करने के लिए और कुछ दिन गलती करने के लिए। और कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जब इंसान सिर्फ ये चाहता है कि बस आज का दिन खत्म हो जाए। और अगर आज आपका दिन ऐसा था तो अपने आप पर सख्त ना हो जाए क्योंकि कल एक नया दिन है। जिंदगी हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं चलती जनाब, कभी तेज, कभी आहिस्ता और कभी रुक कर, लेकिन सफर जारी रहता है। बस इसी सफर को जारी और सारी रखने के लिए प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। ओ माय गॉड, ये घड़ी
मेरा और आपका साथ नहीं दे रही क्योंकि हमारे दरमियान आ रही है एक छोटी सी प्यारी सी चुनौती क्वेश्चन ब्रेक. सो हम ट्रैक शामिल करेंगे क्वेश्चन ब्रेक के उस पार. सो डोंट कन्वे रहेगा मेरे साथ साथ. आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फॉर 97.1 FM एंड टैब. आल्सो प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम.

ऐसा सुकून जिस पर तकदीर भी फिदा, मर्रा मुखामशी ये आरजू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा जंबा।

0: अरे भाई कितनी बार रास्ता बदला, किस मंजिल की तलाश में?
1: मंजिल तो कब की हाथों से छूट चुकी है मियां।

ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक आज की लुटके वापस। उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं और मैं भी आपके साथ साथ हूँ। मुझे कहते हैं जनाब उस्मान खान ने छोटी सी पहले से जिन्होंने कमर्शियल ब्रेक अपने एंजॉय की और कमर्शियल ब्रेक के उस पार बंदा इन चीज हाजिर खिदमतगार। मेरे दोस्तों, अब आज के प्रोग्राम के अहतमाम की तरफ बढ़ने से पहले अभी कुछ वक्त बाकी है, तो जितना वक्त बाकी है इस वक्त को मजीद खूबसूरत हम लोग बनाएंगे आपके साथ साथ रहकर। जिन लोगों ने अभी भी फजा 97.1 FM को ट्यून प्लस यूज किया है, आपको थैंक यू सो मच भी कहेंगे और साथ साथ ये भी कहेंगे कि आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए। एवरी मंडे टू फ्राइडे आप सुनते हैं अपने मेजबान उस्मान खान को प्रोग्राम ड्राइव टाइम में। सुबह से टाइम जहन में रख लीजिएगा, 5 से 7 मिनट और आपका साथ रहता है। सो इस साथ को मजीद खूबसूरत आप लोग खुद मिलकर बनाते हैं। अगर आप नॉटिंगम के इर्द गिर्द से हैं और आप तक ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पाते या कहीं दूर जाना चाहते हैं लेकिन मेरा प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहते या किसी अपने प्यारे को बताना या सुनाना चाहते हैं, सो लाइव स्ट्रीमिंग का आसरा लीजिएगा, सहारा लीजिएगा। गूगल पर जाइएगा और जाकर लिखिएगा radiofaza.co.uk, radiofaza.co.uk। नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं दुनिया की किसी भी जगह, मुझे आसानी से सुन लीजिएगा। एप्लीकेशन पर जाइएगा, एप्लीकेशन तो आपको बाद में मिलेगी, पहले आपने जाना है प्ले स्टोर पर। जी हाँ, प्ले स्टोर या एप स्टोर पर जाइए, वहां पर जाकर लिखिए रेडियो फजा 97.1 FM। पर्पल से बैकग्राउंड के साथ गोल्डन माइक वाली एक खूबसूरत सी एप्लीकेशन आपको मिलेगी, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो दुनिया की किसी भी कोने में किसी भी जगह आसानी मुझे सुन सकते हैं आप, बशर्ते इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो आप मुझे ड्राइव करते हुए सुन सकते हैं जनाब डैब पर। अपनी गाड़ी में फजा डैब ट्यून कीजिएगा और मुझे लाइव सुन लीजिएगा। ना सिर्फ मुझे सुनिएगा बल्कि 24/7 आप हमारे साथ रह सकते हैं। बाकी तमाम आरजेस के प्रोग्राम भी आप जरूर सुना करें और उसमें पार्टिसिपेट भी किया करें, ज्यादा तो कुछ नहीं मिलेगा, अलबत्त आपके नाम ट्रैक जरूर लग जाएगा। इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट भी मिलती रहेगी, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। और जो नंबर मैं आपको बताता हूँ उस नंबर को सेव कर लीजिए, जब आपका दिल करे बस एक पोला सा मैसेज कर दीजिएगा। प्रोग्राम किसी का सुन रहे हैं नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, जब भी कभी कोई भी गाने का मूड हो तो आप बस एक पोला सा मैसेज कर दीजिएगा, आपके नाम पे ट्रैक शामिल हो जाएगा। जल्दी से मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नंबर नहीं सेव किया तो। द नंबर इज 0115710079 71। रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से इसको सेव कर लीजिए।

समझ रहे हैं, काफी टाइम हो गया हमने कोई पंजाबी ट्रैक शामिल नहीं किया, मतलब किया है लेकिन उस तरह से नहीं किया, तो क्यों ना अब थोड़ा सा पंजाबी हो जाए, की कहंदे हो पाजी। अच्छा पंजाबी मुझे कुछ खास आती नहीं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पंजाबी की तरफ तवज्जो कम ही दूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, बहुत पसंद है, लेकिन वो क्या है कि जब भी पंजाबी बोलने की कोशिश करता हूँ तो अली भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पंजाबियों का दिल ना ही तोड़ूं। इसलिए हम पंजाबी में बात कम कम करते हैं।

लीजिए जनाब, एंजॉय कीजिएगा इस खूबसूरत सी आवाज को, इसके उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। ओमेगा भाई जी फजास्तान में शरीक थे, बड़े पीछे महद वड़नाल थोड़ा अपना मेजबान उस्मान खान। तो सर सुन रहे हो जनाब प्रोग्राम ड्राइव टाइम, साढ़े प्रोग्राम चाले काली काफी वक्त पे है थे मुगी पंजाबी खत्म तमाम शुद्ध, इतनी मुश्किल से मैंने रट्टा लगाया हुआ है। खैर आप ही जगह जगह खूबसूरत से म्यूजिक को मिलते हैं इसके उस पार ही के मेरे साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान।

ओके जनाब, अब आते हैं आज के प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ जहां ज्यादा जरा रफ्तार कम नहीं करनी बल्कि बातें और बढ़ानी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस वक्त सफर में हैं, कुछ काम से वापस आ रहे हैं, कुछ दुकान बंद कर रहे हैं, कुछ घर पहुंचने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कहीं कहेंगे कि भाई हम तो अभी आधे रास्ते में, मैं की करा तुसी लेट हो। जनाब अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि रास्ता देखना है, रेडियो सुनना है और मेरी बात पर हंसना भी है, क्योंकि सिर्फ मुंह से हंसना है गाड़ी से नहीं। खैर हमारे यहाँ कभी कभी ड्राइविंग भी ऐसी होती है कि बंदा सोचता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ या जिंदगी और मौत के दरमियान मुज़ाकरात कर रहा हूँ, खास तौर पर जब सामने वाला हाय रश ड्राइविंग करता है। खैर जी, ये सारी वो तमाम तर चीजें हैं जो जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन सफरी तो हमारी सड़कों की खूबसूरती है जनाब, यहाँ पर हर सफर जो है अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, कभी ट्रैफिक की कहानी, कभी किसी अजीब ड्राइवर की कहानी, कभी किसी ऐसे गाड़ी की कहानी जिसके पीछे पूरा एक फलसफा लिखा होता है। जैसे जब कभी हम रहा करते थे ना पाकिस्तान में, मैं रहता था तो वहां पर जितने लोग पाकिस्तान से मुझे सुन रहे हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि वहां पर ना रिक्शे जो चलते हैं ऑटो, उनके पीछे ना पूरा पूरा एक जुमला लिखा होता है। कभी किसी वो पाकिस्तानी या इंडियन ट्रक के पीछे एक ऐसा जुमला के बंदा ट्रैफिक में खड़े खड़े जिंदगी के बारे में सोचने लगता है, मतलब जैसे जैसे जैसे जैसे वो था ना माँ की दुआ, जन्नत की हवा, बंदा सोचता है भाई पहले मुझे इस ट्रैफिक से तो निकलने दो, फिर जन्नत की हवा भी देख लेंगे। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊँ आपको, हम इंसान जहाँ भी जाते हैं ना अपने साथ अपनी आदतें जरूर ले जाते हैं। आप किसी के घर जाएं, वहाँ जूते एक जगह रखे होंगे, लेकिन आपके घर में शायद जूते दरवाजे से लेकर कमरे तक पूरा रास्ता बना रहे हों। किसी के घर में खाने का वक्त मुकर्रर होगा और किसी घर में सवाल होगा खाना कब खाना है, और फिर जवाब आता है बस थोड़ी देर में, और फिर थोड़ी थोड़ी देर वो होती है ना जो पैजन कदी कदार दो दो घंटे भी होते ने। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर घर में एक जैसी होती है, वो होता है टीवी का रिमोट। रिमोट एक ऐसी चीज है जिसकी असल अहमियत उस वक्त मालूम होती है जब वो गायब हो जाए। पूरा घर तलाश करेगा, सोफे उठाएंगे, कुशन उठाएंगे, बेड के नीचे देखा जाएगा, मेज के नीचे देखा जाएगा, और आखिर में पता चलेगा रिमोट साहब तो किसी ऐसे शख्स के हाथ में जो 15 मिनट से कह रहा था मेरे पास तो नहीं है। अच्छा होता है ऐसा अक्सर घरों में, और फिर जब मिल जाते हैं तो सब ऐसे खुश होंगे जैसे घर का कोई कीमती खजाना मिल गया हो। ये छोटी छोटी यादें जो है ना, ये छोटी छोटी बातें जो है, यहीं से तो घर घर लगता है। खैर एक सवाल है आपके लिए, आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है जो अक्सर गायब रहती है? चाबी, रिमोट, चार्जर, कुछ लोगों के तो मोजे भी गायब हो जाते हैं। या फिर एक खास पेन जो घर में सब इस्तेमाल करते हैं मगर वापस रखना किसी को याद नहीं रहता, और मजे की बात घर में अगर कोई चीज ढूंढनी हो ना तो सबसे पहले एक दूसरे पर इल्जाम लगता है, तुमने उठाया होगा, नहीं मैंने तो नहीं उठाया, फिर कहाँ गया मुझे क्या पता। फिर 10 मिनट बाद वही चीज उसी जगह से मिलती है जहां पहले 3 दफा देख चुके हूं, और घर का एक बंदा ऐसा लाजमी कहता है मैंने तो पहले ही कहा था यही होगी। होता है ना ऐसा, और भाई अगर पहले ही कहा था तो फिर हमें भी बता

0: सुनिए। जिंदगी में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर हमें उस वक्त होती है जब वो हमारे पास नहीं रहती। वक्त भी इन्हीं चीजों में से एक है। हम अक्सर कहते हैं कि वक्त नहीं है, लेकिन कभी कभी हकीकत यह होती है कि वक्त नहीं तवज्जो नहीं होती। हम दो दो घंटे मोबाइल देख सकते हैं, लेकिन 5 मिनट किसी अपने के साथ बैठने के लिए वक्त नहीं मिलता। हम एक पूरी फिल्म तो देख सकते हैं, लेकिन किसी के पास 5 मिनट की बात सुनने का वक्त नहीं होता। हम सोशल मीडिया पर अजनबी लोगों की जिंदगियों की खबरें जान लेते हैं, लेकिन हमारे साथ बैठे हुए शख्स के दिल में क्या चल रहा है ये नहीं पूछते। और शायद यही आज के जमाने की एक अजीब हकीकत है। हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन कभी कभी पहले से ज्यादा डिसकनेक्टेड भी। हमारे पास रबते के जराए तो बहुत सारे हैं, फोन है, मैसेजेस हैं, वीडियो कॉल्स हैं, सोशल मीडिया है, लेकिन फिर भी बात सुखात है कि इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ इसलिए नहीं बता पाता कि मैं ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ। इसलिए अगर आपके आसपास से कोई ऐसा शख्स है जो आज खामोश है, तो जरूरी नहीं कि वो नाराज हो, जरूरी नहीं कि वो बदतमीज हो, जरूरी नहीं कि उसे आपसे शिकायत हो, सकता है कि वो थका हुआ हो सकता है कि वो किसी ऐसी बात के बारे में सोच रहा हो जिसका जिक्र वो किसी से नहीं कर सकता। इसलिए कभी कभी बहुत बड़ा मशवरा देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इतना पूछ लेना काफी होता है, सब ठीक है? और अगर जवाब आए हाँ ठीक है, तो फौरन ये ना कहें अच्छा तो फिर ठीक है, बल्कि कभी कभी दोबारा पूछ लेना चाहिए, पक्का? शायद दूसरी बार वो बात कह दे जो पहली बार नहीं कह सका। खैर जनाब, चले हल्का सा थोड़ा सा माहौल चेंज कर।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be. Safely and on time.
8: Attention,
9: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005. By providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
10: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
11: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
10: सलासा ट्यूशन सेंटर?
11: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है.
10: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
11: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
10: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ.
12: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
13: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: जी ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: Ya per English or Arabic. तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM.
0: हो गया ना कमाल.
2: This is a public service announcement.
3: The station
4: that plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान.

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
4: बिगर बिगर एंड बेटर बेटर द रेडियो स्टेशन फॉर पीपल हु लव म्यूजिक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैप।
8: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

हो चकाचक फिर लो पान चबाए। आहा।

0: ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: आपके दिल की धड़कन, रेडियो फजा 97.1 FM।

अय्या करूं मैं क्या सुख सुख खो गया दिल मेरा सुख सुख

0: को मत ऐ दोस्तों, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: suku, suku.
1: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM.

न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए।

मां किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानी आय मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: सुनते रहिए Radio Fazaa 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.